अजीज दोस्तों, हिंदुस्तान की आजादी की सालगिरह पर मैं और मेरे साथी आपको दिली मुबारकबाद पेश करते हैं, और जिस शौक से आप आजादी का जश्न मनाने यहां आए हैं उसका शुक्रिया अदा करते हैं। आज रात यौम आजादी के शानदार जश्न पर मैं और मेरे साथी आपके सामने एक कव्वाली पेश करने वाले हैं, मगर इससे पहले मुझे इतनी गुजारिश करनी है कि आज ये कव्वाली महज कव्वाली नहीं बल्कि मेरी जिंदगी का, मेरी मोहब्बत का बहुत बड़ा इम्तिहान बन गई है। हादसा अक्सर इंसान को एक दोराहे पर लाकर खड़ा कर देते हैं और उसे फैसले का हक होता है कि वो कौन सा रास्ता इख्तियार करे, मगर मेरे लिए तो वो दोराहा भी नहीं, मेरे लिए एक ही रास्ता है, एक ही फैसला, एक ही अंजाम। इसलिए आज इस भरी महफिल के सामने मेरा यह वादा है, या तो वो हाथ जिन्होंने मेरे गले में यह हार डालते हुए मोहब्बत की कस्में खाई थी मुझे दोबारा यह हार पहनाएंगे, या आज की रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात होगी।

0: क्यों रे शैतान, तूने क्यों बताया मैं गाना जानती हूँ?
1: जरा तारीफ करी थी, वरना तुम गाती क्या हो? रोती हो पिया बिन नाही चैना, रोती हूँ दिन रहना, हाय हाय हाय।
0: मैं ऐसा गाती हूँ?
1: मैं तो ऐसा ही सुनता हूँ।
0: और तू?
1: मैं

0: बोलो ना।
1: अपने घर को छोड़ के जाऊं, इतनी मैं ना दान नहीं हूँ।
2: अरे तेरी

0: ना ना
1: मेरे देखो
0: पहले धीरज धर लो मोल किसके लूं अज छोड़ किसके दूं अजी तुम्ही फैसला कर लो तुम्ही फैसला कर लो वेरी गुड
1: मेरे फूल है चांद सितारे
0: ब्यूटीफुल
1: अच्छा
0: जी
1: ये है लाल बाग के
0: वाह
1: बढ़िया ये फूलों वाली चुप चुप रेस दूंगी गाले
0: अरे क्या करती हो
1: मालूम नहीं कतलापा मेरे बच्चे आएंगे ना पापा
0: अरे क्यों लड़ती हो
1: तेरा भेजा छोड़ दूंगी
0: है
1: तेरी नाक तोड़ दूंगी
0: अरे पुलिस

0: काहरी तू? अरे मेरी प्यारी काली कोयल, कहां छुप गई तू? अरे जुलेखा,
1: या अल्लाह वो आ गया। देखो देखो मेरे फेफड़े का टुकड़ा आ गया।

तीन बाटी मिले। पहचाना, मेरा नाम है हलीमा, प्यार से लोग मुझे कहते हल्लो। तुम्हारा नाम क्या है? बाके हल्लो।

है हलीमा, प्यार से लोग मुझे कहते हैं हल्लू। जब मैं पैदा हुई पूछो ना बात, ना दिन था ना रात, घड़ी के दो कांटे हुए तभी एक ही कांटा नजर आ, ना इधर ना उधर, किसे थी खबर बड़ी होकर मैं क्या बनूंगी। फिर जब मैं बड़ी हुई मेरी चाल बदलने लगी, हाय जब मेरी कंबल लटकने लगी, ऐसे ऐसे मैं गली गली भटकने लगी। फिर एक दिन वो मिला, क्या नाम था माटी मिले का, हाँ मैं मौज मिला।

सबसे बड़ी बात जो म्यूजिक में होती है वो सुर होता है। सुर नहीं तो कुछ भी नहीं, हम कहते हैं बेसुरा है। म्यूजिक की वैल्यू खत्म हो जाती है, चाहे वो क्लासिकल हो, चाहे फिल्मी हो, चाहे गजल हो, भजन हो। तो वो सुरीली इतनी है कि उनकी टक्कर का सुरीला अभी तक तो मैंने सुना नहीं।

हंसते हुए फूल, ये महका हुआ गुलशन, ये रंग में और नूर में डूबे हुए राहें, ये रंग में और

गलियां ये मसली हुई अधखिली जल कलियां ये बिकती हुई खोखली

आप क्या जाने मुझको समझते हैं क्या, मैं तो कुछ भी नहीं। इस कदर प्यार इतनी बड़ी भीड़ का मैं रखूंगा कहां, इस कदर प्यार रखने के काबिल नहीं मेरा दिल मेरी जान। मुझको इतनी मोहब्बत न दो दोस्तों, मुझको इतनी मोहब्बत न दो दोस्तों, सोच लो दोस्तों इस कदर प्यार कैसे संभालूंगा मैं तो कुछ भी नहीं।

प्यार एक शख्स का भी अगर मिल सके तो बड़ी चीज है जिंदगी के लिए। आदमी को मगर ये भी मिलता नहीं, ये भी मिलता नहीं। मुझको इतनी मोहब्बत मिली आपसे, मुझको इतनी मोहब्बत मिली आपसे, ये मेरा हक नहीं, मेरी तकदीर है। मैं जमाने की नजरों में कुछ भी न था, मैं जमाने की नजरों में कुछ भी न था, मेरी आंखों में अब तक वो तस्वीर है। इस मोहब्बत के बदले मैं क्या नजर दूं, मैं तो कुछ भी नहीं। इज्जतें शोहरतें चाहतें उल्फतें कोई भी चीज दुनिया में रहती नहीं। आज मैं हूं जहां कल कोई और था, आज मैं हूं जहां कल कोई और था, ये भी एक दौर है वो भी एक दौर था। आज इतनी मोहब्बत ना दो दोस्तों, आज इतनी मोहब्बत ना दो दोस्तों कि मेरे कल की खातिर ना कुछ भी रहे। आज का प्यार थोड़ा बचा कर रखो, आज का प्यार थोड़ा बचा कर रखो मेरे कल के लिए। कल कल जो गुमनाम है, कल जो सुनसान है, कल जो अनजान है, कल जो वीरान है, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो कुछ भी नहीं।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम भी भूल गए कि हम मन के, बुद्धि के, संस्कारों के, इन कर्म इंद्रियों के हम मालिक हैं, हम राजा हैं, हम भूल गए। आज हम कहते हैं मुंह से निकल गया, हाथ उठ गया, आंखों से देख लिया, किसी का बुरा बोल दिया। मन तो सारा दिन चलता है, वो तो कभी सोचा, वो तो उसके बारे में तो। कर्म इंद्रियों के भी गुलाम, ये तो सूक्ष्म इंद्रियां, इसको हम कहते हैं सटल ऑर्गन्स, मन, बुद्धि, संस्कार। लेकिन फिजिकल सेंस ऑर्गन्स, ये पांचों कर्म इंद्रियां, ये भी आज हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आत्मा आउट ऑफ कंट्रोल ओवर इट्स ओन ऑर्गन्स, ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीबडी एल्स। इट्स लाइक ड्राइविंग ऑन द रोड, अपनी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल, लेकिन चाहते हैं कि बाकी सब की गाड़ी मेरे हिसाब से चले। रिजल्ट क्या होगा? एक्सीडेंट के अलावा और तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी सब गाड़ियों में भी जो बैठे हैं ना, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है। वो भी ये चाहते हैं कि हमारी गाड़ी उनके हिसाब से चले। जस्ट विजुअलाइज दिस सीन ऑन द रोड, जस्ट ओनली सी कि पांच गाड़ियां एक सड़क पर हैं, पांचों के ड्राइवर्स का अपनी अपनी गाड़ी पर कंट्रोल खत्म हो चुका है। एंड पांचों चाहते हैं कि जो बाकी चार हैं गाड़ियां, वो उनके कंट्रोल से चले।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आपने रात को सोने से पहले भी उस बात के साथ रिजोल्व नहीं किया अपने आप को, आप वो अनरिजोल्व बात के साथ सो गए, तो मन क्या करता है रात को सारा दिन की हुई बातें या जो कुछ हमारे माइंड पे है, देखो कोई प्रॉब्लम है, क्यों लोगों को नींद नहीं आती व्हेन दे आर अंडर स्ट्रेस, कोई प्रॉब्लम है नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती है? क्योंकि मन सोचना बंद नहीं करता है, सोने के लिए द माइंड नीड्स टू स्लो डाउन. If I am disturbed about something, the mind just goes on and on. आपके साथ एक बच्चा बैठा है, वो पूछता जाएगा जब तक आप उसको आंसर नहीं देंगे. आंसर दिए बिना ही सो गए तो वो तो रात को भी सोचता रहेगा. एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ अस टुडे एक्सपीरियंस कि हम अपने 6 घंटे तो सो रहे हैं, 6 घंटे 8 घंटे जितना सोना है, लेकिन जब हम सुबह उठ रहे हैं द माइंड इज नॉट एज फ्रेश एज इट नीड्स टू बी.
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियां बांटो.

आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: जब हम भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं, दैट इज नॉट फेयर, बिकॉज पिता है, हम बच्चे हैं, वो कभी नहीं ये डिसाइड करेगा कि एक बच्चा ट्रेन ब्लास्ट का विक्टिम हो जाए और दूसरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। एक पिता कभी ये नहीं कर सकता है। और अगर परमात्मा ये कर भी रहा है तो देन वी कैन क्वेश्चन ऑन व्हाट बेसिस। परमात्मा हमारी जीवन की यात्रा नहीं डिसाइड कर रहा है, हमारे अपने किए हुए कर्म, एंड दैट्स व्हाई थॉट्स लीड्स टू डेस्टिनी। उसमें सब थॉट्स जो अभी किए, जो बहुत सारे पहले, लेकिन वही थॉट्स अब उस डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। अब जो हुआ हादसा, वो पिछले किसी कार्मिक अकाउंट की वजह से हुआ, लेकिन उस हादसे के बाद अब क्या करना है, एटलीस्ट दैट इज इन माई कंट्रोल नाउ।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम खुश बैठे हैं, हम प्यार से वो चीज खा रहे हैं जो हमें पसंद है, तो पूरी सिचुएशन तो हमारी एक्चुअली। सी द सिचुएशन इज ऑल अबाउट मी। मैं आराम से इस कुर्सी पे बैठी हूँ, मेरे सामने मेरी फेवरेट मिठाई है, मैं प्यार से खा रही हूँ, एवरीथिंग इज परफेक्ट, हैप्पी हैप्पी। और सामने से कोई आया, किसी ने एक लाइन बोल दी। इस केस में लाइन इतनी बहुत ज्यादा कड़वी भी नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी ने कोई कड़वी लाइन भी बोल दी, कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर ली, किसी ने झूठ बोल दिया, किसी ने डांट दिया। इस केस में तो कुछ भी नहीं था, इस केस में थोड़ा सा बोला कि आपको थोड़ी परहेज करनी चाहिए थी। हियर माई वर्ल्ड वॉज परफेक्ट, सब कुछ मेरे अनुसार था, लेकिन सामने से कोई आया, सामने से किसी ने एक लाइन बोली और वो एक लाइन ने मेरे पूरे वर्ल्ड को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। मन डिस्टर्ब्ड, फीलिंग्स डिस्टर्ब्ड, फिर वर्ड डिस्टर्ब्ड, काफी देर तक डिस्टर्ब्ड। मीनिंग वन लाइन, किसी की एक लाइन मेरी इस दुनिया को एक घंटे के लिए डिस्टर्ब कर सकती है। और ये भी हो सकता है कि अगली बार जब आप वो उनसे मिलेंगे तब भी आपको वो वाली बात याद आ जाएगी। सो इट विल नॉट इवन रिस्ट्रिक्ट टू दिस वन आवर। ये हो सकता है कि इट स्टेज ऑन माई माइंड and it comes back to my mind later on. शायद कभी जब वो लड्डू खा लिया तब वो बात याद आ जाएगी, या शायद वो बहन सामने कभी आ जाएगी तो वो बात याद आ जाएगी। मतलब my mind, ये हमारा एक्सरे है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: मैं आ गई पुराना स्तंभ जी, लेकिन आज कहानी ना थोड़ी देर से सुनाइएगा। पहले आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है।
1: जरूर, बताओ क्या समस्या है।
0: समस्या ये है कि बताइए, अगर घर में मम्मी पापा रोज लड़ाई करते हो तो क्या किया जाए।
1: तुम्हारे माता पिता लड़ते हैं?
0: वो तो किसके नहीं लड़ते, थोड़ी बहुत खिटपिट तो सब जगह होती है, लेकिन हमारे ऊपर वाले फ्लैट से रोज लड़ने की आवाजें आती हैं। पति शराब में धुत और पत्नी बस रोती रहती हैं। एक बार सोसाइटी के सभी लोगों ने मिलकर बात करने की भी कोशिश की थी, परंतु थोड़े दिन तक तो उसका असर रहा, फिर सब कुछ वहीं का वहीं। सभी लोग परेशान हैं, क्या किया जाए समझ ही नहीं आता।
1: शराब एक भयानक आदत है मनु, शुरुआत होती है बस एक बार पीने से और कब लत लग जाती है पता ही नहीं चलता। न जाने कितने घर इसी कारण बर्बाद हो गए। तुम एक काम करो, अपने पिताजी से कहो कि वे दिन में अकेले जाकर उस व्यक्ति से बात करें, और यदि वो छोड़ने को राजी हो जाता है तो शराब छोड़ने की दवाई के साथ साथ मेडिटेशन सिखाने भी लेकर जाएं।
0: अच्छा, लेकिन अगर वो दवाई लेंगे तो फिर मेडिटेशन की क्या जरूरत है?
1: मेडिटेशन तो दवाई से भी जरूरी है, क्योंकि दवाई सिर्फ तन को ठीक करती और बीमारी असली मन में है। उसे ठीक करने के लिए मेडिटेशन की अति जरूरत है। मेडिटेशन तो अनिवार्य है।
0: ठीक है, आज ही मैं ऐसा करूंगी। अच्छा पुराना स्तंभ जी, अब आप बाल गंगाधर तिलक की आगे की कहानी सुनाइए ना।
1: हाँ जरूर जरूर सुनाता हूँ, तो सुनो। सन 1888 ईस्वी के दौरान तिलक और आगरकर के बीच सामाजिक और धार्मिक प्रश्नों पर मतभेद शुरू हो गए थे मनु। इसके कारण श्री आगरकर ने केसरी के संपादक पद से भी इस्तीफा दे दिया और अपने पत्र सुधारक का प्रकाशन शुरू किया।
0: अच्छा,
1: इसी समय ये स्पष्ट हो गया कि स्कूल और कॉलेज और समाचार पत्रों के हित एक से नहीं है, सो उनका विभाजन कर दिया गया। जिसके अनुसार आर्यभूषण प्रेस और दो समाचार पत्र तिलक, प्रोफेसर केलकर और H.N. गोखले की संपत्ति बन गए। प्रोफेसर केलकर दोनों पत्रों के प्रभारी संपादक बना दिए गए।
0: अच्छा,
1: ये स्थिति सन 1890 ईस्वी तक रही और अनिश्चित काल तक चलती रही। अगर नए मतभेदों के कारण संबंधों की दरार अधिक नहीं बढ़ती, ये मतभेद मुख्य रूप से उन सिद्धांतों के बारे में थे जिनसे आजीवन सदस्यों का आचरण और स्कूल का प्रबंध नियंत्रित होता था। ये स्थिति सन 1889 ईस्वी में प्रोफेसर गोखले के सार्वजनिक सभा का सदस्य बनने से पैदा हुई।
0: अच्छा,
1: तिलक शुरू से ही इस मत के थे कि आजीवन सदस्यों को जेसुइट पादरियों की तरह सादा जीवन बिताना चाहिए और अपना संपूर्ण समय और ऊर्जा अध्यापन कार्य में लगानी चाहिए। उनके अधिकतर सहयोगी इस बात से सहमत नहीं थे।
0: अच्छा,
1: तिलक के विचारों से उनके अधिकतर सहयोगियों के सहमत न होने के कारण तिलक ने नवंबर सन 1890 ईस्वी में अपना त्याग पत्र भेजकर सोसाइटी से अपने सभी संबंध समाप्त कर लिए। प्रोफेसर के रूप में तिलक अत्यंत लोकप्रिय थे। वे गणित के स्थायी प्रोफेसर थे और बीच बीच में संस्कृत और विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में भी कार्य करते थे। मौलिकता और एक एक बात का ध्यान रखना उनका आदर्श वाक्य था, और वे जो भी विषय पढ़ाते थे उसमें उनके छात्रों को कभी भी शिकायत करने का अवसर नहीं मिला था।
0: अरे पाँ,
1: गणितज्ञ के रूप में उनका जवाब नहीं था, और वे अपने छात्रों को अक्सर दक्खन कॉलेज के प्रोफेसर छत्रे की याद दिलाते थे जो तिलक के गुरु भी थे। कॉलेज से इस्तीफा देने के बाद तिलक ने कानून की कक्षा शुरू की। ये बम्बई प्रेसिडेंसी में अपने ढंग का पहला शैक्षणिक संस्थान था। छात्रों को हाई कोर्ट और वकालत की परीक्षा के लिए तैयार करता था।
0: अरे वाह!
1: और उन्होंने केसरी का भार भी संभाल लिया।
0: इतने सारे काम एक साथ।
1: प्रोफेसर केलकर वर्ष के अंत तक मराठा के संपादक बने रहे, परंतु शीघ्र ही उन्हें प्रोफेसर केलकर को समाचार पत्र के साथ अपना संबंध पूरी तरह समाप्त कर देना पड़ा। अब तिलक दोनों पत्रों के संपादक बन गए।
0: अच्छा।
1: एक वर्ष इन दोनों के बीच प्रेस और समाचार पत्रों का विभाजन हो गया। तिलक केसरी और मराठा समाचार पत्रों के एकमात्र मालिक और संपादक हो गए। प्रोफेसर केलकर और श्री गोखले आर्यभूषण प्रेस के मालिक रहे। दोनों समाचार पत्रों को अपने जन्म के बाद इस तरह अनेक उतार चढ़ावों से गुजरना पड़ा। तिलक द्वारा केसरी को संभालने के बाद उसकी ग्राहक संख्या में तेजी से वृद्धि हुई।
0: अच्छा।
1: तब उनकी ग्राहक संख्या देश के किसी भी अन्य समाचार पत्र की ग्राहक संख्या से कहीं अधिक थी।
0: अरे वाह, ये तो कमाल की बात है।
1: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल के तिलक के विचार जरा ज्यादा ही उग्र थे। नरम दल के लोग छोटे सुधारों के लिए सरकार के पास वफादार प्रतिनिधि मंडल भेजने में विश्वास रखते थे, जबकि तिलक का लक्ष्य स्वराज्य था, छोटे मोटे सुधार नहीं। और उन्होंने कांग्रेस को अपने उग्र विचारों को स्वीकार करने के लिए राजी करने का प्रयास किया।
0: अच्छा।
1: इस मामले पर सन 1907 ईस्वी में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में नरम दल के साथ उनका संघर्ष भी हुआ। राष्ट्रवादी शक्तियों में फूट का लाभ उठाकर सरकार ने तिलक पर राजद्रोह और आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाकर उन्हें 6 वर्ष के कारावास की सजा दे दी।
0: ओह माय गॉड।
1: और मांडले बर्मा वर्तमान म्यांमार में निर्वासित कर दिया। मांडले जेल में तिलक ने अपनी महान कृति भगवद गीता रहस्य का लेखन शुरू किया।
0: अच्छा।
1: जो हिंदुओं की सबसे पवित्र पुस्तक का मूल टीका है। तिलक ने भगवत गीता के इस रूढ़िवादी सार को खारिज कर दिया कि यह पुस्तक सन्यास की शिक्षा देती है। उनके अनुसार इसमें मानवता के प्रति निस्वार्थ सेवा का संदेश मिलता है।
0: अरे वाह!
1: प्रथम विश्व युद्ध के ठीक पहले सन 1914 ईस्वी में रिहा होने पर वह पुनः राजनीति में कूद पड़े। स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक के नारे के साथ इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की। सन 1916 ईस्वी में वह फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए।
0: अच्छा।
1: तथा हिंदू और मुसलमानों के बीच हुए ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो उनके और पाकिस्तान के भावी संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के बीच हुआ था। इंडियन होम रूल लीग के अध्यक्ष के रूप में तिलक 1918 में इंग्लैंड गए। उन्होंने महसूस किया कि ब्रिटेन की राजनीति में लेबर पार्टी एक उदयमान शक्ति है, इसलिए उन्होंने उसके नेताओं के साथ घनिष्ठ संबंध कायम किए। उनकी दूरदृष्टि सही साबित हुई। सन 1947 ईस्वी में लेबर सरकार ने ही भारत की स्वतंत्रता को मंजूरी दी।
0: अच्छा।
1: तिलक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि भारतीयों को विदेशी शासन के साथ सहयोग नहीं करना चाहिए। इस बात से वह बराबर इनकार करते रहे कि उन्होंने हिंसा के प्रयोग को उकसाया। तिलक सन 1895 ईस्वी में शिवाजी स्मरणोत्सव आंदोलन के साथ भी जुड़ गए। उस वर्ष 23 अप्रैल के केसरी में प्रकाशित एक लेख से जनता में इतना उत्साह जागृत हुआ कि रायगढ़ में शिवाजी की समाधि के पुनर्निर्माण के लिए थोड़े ही समय में 20,000 रुपए एकत्र हो गए। इसमें से अधिकांश पैसा छोटे छोटे चंदों से हासिल हुआ था। उसी समय से शिवाजी के जन्म दिवस और राज्याभिषेक पर भी समारोह मनाए जाने लगे।
0: अच्छा,
1: जब सन 1895 ईस्वी के क्रिसमस के दौरान पुणे में राष्ट्रीय कांग्रेस का 11वां अधिवेशन करने का निश्चय किया गया तो पुणे की सभी पार्टियों ने सर्वसम्मति से तिलक को स्वागत समिति का सचिव बनाया। इस हैसियत से कांग्रेस अधिवेशन के आयोजन का सभी काम तिलक को करना पड़ा। उन्होंने सितंबर तक कार्य किया। जब इस विषय पर विवाद हो गया कि क्या कांग्रेस के पंडाल में सामाजिक परिषद भी होगी तो पार्टी में जबरदस्त झगड़ा हो गया।
0: अच्छा।
1: जिसके कारण तिलक ने स्वयं को इस काम से अलग कर लिया। फिर भी उन्होंने कांग्रेस की गतिविधियों में दिलचस्पी लेना बंद नहीं किया, बल्कि बाहर रहकर कांग्रेस अधिवेशन को सफल बनाने का पूरा पूरा प्रयास किया।
0: पुराना स्तंभ जी, ये कहानी सुनकर तो ऐसा लगता है कि लोग सच ही कहते हैं, कुछ लोग मर कर भी अमर रहते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। आखिर उनके विचार और उनका बलिदान भारत की मिट्टी में बसा है।

0: अच्छा पुराना स्तंभ जी, मुझे थोड़ा मेडिटेशन के बारे में और बताइए ना, कैसे करते हैं?
1: मनो मेडिटेशन अर्थात योग, माना जुड़ना। जैसे गणित में कहते हैं ना, दो से दो का योग चार होता है। वैसे ही आत्मा यानी रूह यानी सोल का परमात्मा को याद करना ही योग है। बस चलो, जैसा जैसा मैं कहता हूँ तुम अनुभव करती जाओ, ठीक है?
0: ओके, मैं ना सीधा होकर बैठ जाती हूँ।
1: देखो, मैंने बताया था कि आत्मा का परमात्मा को याद करना योग है। तो पहले तो हम अपने आप को आत्मा निश्चय करते हैं। विचार करो कि तुम एक आत्मा हो, इस शरीर में सर्वोच्च भ्रकुटी के मध्य चमकता हुआ सितारा हो। और जैसे तुम आत्मा चमकता हुआ सितारा हो, वैसे ही तुम आत्मा के पिता परमात्मा, वह भी चमकते हुए सितारे हैं। अब दो सितारों को मिलना है, मतलब याद करना है। तो याद के रास्ते विचारों से हम अपने पिता परमात्मा के पास जाएंगे। परमात्मा जो पांच तत्वों से पार, निर्वाण धाम, शांति धाम या सातवां आसमान इसको कहा जाता है, वहां पर है। ख्याल करो कि तुम इस शरीर से निकलकर इन चांद सितारों के पार दूर निर्वाण धाम शांति धाम में अपने परमात्मा पिता के पास जा रही हो। बाहर का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, एक सितारा जो चमकता हुआ सितारों चांद तारागणों के बीच से निकलता हुआ परम धाम शांति धाम में उस दिव्य सितारे के पास पहुंच जाता है जो सर्वशक्तिवान परमात्मा है। अब परमात्मा को महसूस करो कि वह तुम्हारे सामने है, उसकी शक्तियां तुम में आ रही हैं, और ये शक्तियां लेकर तुम पुनः वापस चांद सितारों की दुनिया से गुजरते हुए इस पांच तत्वों की दुनिया में पुनः अपने शरीर में भ्रकुटी के मध्य पे आ बैठी। बार बार ये अभ्यास करने से आपको आत्मा को शक्ति महसूस होगी, और आत्मा जब सशक्त होगी तो वो जो करना चाहती है वह कर पाएगी। इसी को मेडिटेशन कहते हैं मनो।
0: वाह, मेरा मन तो एकदम जैसे शांत हो गया। ऐसी अनुभूति मैंने पहले तो कभी नहीं की।
1: है ना ये अलौकिक और बेहद सहज योग।
0: मैं पापा को आज ही बोलती हूँ कि हम सब भी मेडिटेशन सीखने जाएंगे, और मुझे लगता है इससे उनके भी बढ़ते हुए बीपी का इलाज हो जाएगा।
1: मेडिटेशन कई तरीकों से लाभदायक है।
0: इसका फायदा हम सब मिलकर उठाएंगे।
1: जरूर।
0: अच्छा, अब मैं चलती हूँ पुराना स्तंभ जी। थैंक यू, बाय बाय।
1: बाय बाय मनु।
0: पुराने स्तंभ जी का बेहद धन्यवाद। चलिए अब अपने एक्सपर्ट जी से भी सुनते हैं बाल गंगाधर तिलक जी के लिए कुछ अन्य विशेष बातें।
2: सुनीता अरविंद भोसले आपल्या बरोबर आहे, आणि लोकमान्य टिलक यांच्या बद्दल ते माहिती देत आहे। तर लोकमान्य टिलक, आपण जेव्हा विचार करतो त्यांच्या बद्दल, इतिहास त्यांनी घडवलाय आपल्या समोर आहे, जे पण आपण वाचन करतो किंवा बघतो त्याच्या बरोबर असं काही गोष्टी आहेत ज्या लोकांना अजून माहिती नाही लोकमान्य टिलकांबद्दल, त्या विषयाबद्दल सांगा।
3: लोकमान्य टिलकांनी फक्त पत्रकारिता किंवा समाज सुधारणेसाठी इंग्रजांबरोबर जसा लढा दिला, तसंच लोकांना संघटित करण्यासाठी त्यांनी 1893 साली सार्वजनिक गणेशोत्सव सुरू केले आणि 1895 सालापासून त्यांनी शिवजयंती हे उत्सव सुरू केलेले आहेत. तसंच लोकमान्य टिळकांनी शिक्षण क्षेत्रातही कार्य केलेलं आहे. ते लहानपणापासूनच तल्लक बुद्धीचे असल्यामुळे त्यांचं सगळं शिक्षण पुण्यामध्ये झालेलं आहे. पुण्यामध्ये न्यू इंग्लिश स्कूलच्या स्थापनेच्या कार्यामध्ये ते आगरकर चिपळूणकर यांच्याबरोबर ते कार्यरत होते. तसेच फर्ग्युसन महाविद्यालयाच्या स्थापनेमध्ये पण त्यांनी हातभार लावलेला आहे. तसंच मॉडर्न एज्युकेशन सोसायटीच्या स्थापनेतही त्यांनी हातभार लावलेला आहे. म्हणजे समाज सुधारणेच्या कार्यामध्ये आणि शिक्षणाच्या कार्यामध्येही त्यांनी मोलाचा सहभाग घेतलेला आहे.
2: इतिहास बरोबर लोकमान्य टिळकांनी जे कार्य केले किंवा त्यांचे जे वैशिष्ट्य आहे जे लोकांपर्यंत पोहोचले नाही त्याच्याबद्दल.
3: लोकमान्य टिळक हे एक सामान्यांचे नेते होते. लोकमान्य टिळकांनी होम रूल लीग या संस्थेची स्थापना केली होती आणि या संस्थेचं कार्यच होतं की स्वराज्य प्राप्ती हे त्या संस्थेचं ध्येय होतं. तसंच त्यांनी एक त्रिकूट त्या काळामध्ये ओळखलं जात होतं, लाल बाल आणि पाल. या लाल म्हणजे लाला लजपत राय, बाल म्हणजे बाल गंगाधर टिळक आणि पाल म्हणजे बिपिनचंद्र पाल. हे तिन्ही नेते जहाल विचारांचे होते की भारताला पहिल्यांदा स्वातंत्र्य मिळालं पाहिजे आणि त्याच्यामध्ये भारतातील समाजामध्ये आपण सुधारणा घडवू शकतो या विचारांनी हे नेते प्रेरित होते आणि त्याच दृष्टीने ते कार्यही करत होते. तसंच लोकमान्य टिळक जे होते यांचे अनेक लेख त्यांच्या केसरी या वर्तमानपत्रातून आणि मराठा या वृत्तपत्रामधून आलेले आहेत. 1881 ते 1920 या 40 वर्षाच्या काळात त्यांचे 513 अग्रलेख लिहिले आहेत. त्याच्यामधले काही तुम्हाला मला असे सांगावेसे वाटतात. सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का? उजाडले पण सूर्य कुठे आहे? टिळक सुटले पुढे काय? प्रिन्सिपॉल शिशुपॉल की पशुपॉल? टोणग्याचे आचक हे आमचे गुरुच नव्हेत, बादशाह ब्राह्मण झाले. अशा प्रकारचे अनेक लेख त्यांनी वर्तमानपत्रामधून लिहिलेले आहेत आणि या वर्तमानपत्रातून लिहिलेल्या लेखांमुळे त्यांनी जनतेचा स्वातंत्र्य चळवळीसाठी जनतेला त्यांनी उद्युक्त तर केलेच, शिवाय सामाजिक परिवर्तन करून जनजागृतीचं महत्वाचं कार्य त्यांनी केलेलं आहे.
2: सुनीता अरविंद भोसले, फार फार धन्यवाद लोकमान्य टिळकाबद्दल. तुम्ही एवढी सुंदर माहिती आपल्याला दिला,
3: धन्यवाद.
0: सुना ना आपने, और सुन के मजा भी आया ना. कितना कुछ सीखने को मिलता है जब हम इसी मिट्टी से जन्मे यानी भारत माँ के सपूतों की कहानी सुनते हैं. मैं हूँ मनु और दोस्तों मैं आपसे बात कर रही हूँ बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में, जिनकी कहानी आपने सुनी. सुनकर मुझे तो बहुत मजा आया, सभी बातें खास थी. उन्होंने इतने सारे कार्य साथ साथ किए, चाहे वो अखबार चलाना हो, चाहे कॉलेज और स्कूल में पढ़ाना हो, सभी कार्य वे साथ साथ करते रहे. मैं सोच रही थी उनका टाइम मैनेजमेंट और विल पावर कितनी स्ट्रांग होगी. जो करना है वो करना ही है, और दिन में वही 24 घंटे सभी के पास होते हैं. आज अगर हम लोग देखें तो कभी कभी एक कार्य करना होता है तो दूसरे को फिर वेट करना पड़ता है. लगता है ये सब चीजें हम साथ में कैसे कर सकते हैं. जैसे अगर जॉब कर रहे हैं तो साथ में अगर पढ़ाई करनी है तो मुश्किल लगती है, या पढ़ाई के साथ साथ कुछ घर का काम करना है तो मुश्किल लगता है. लेकिन अगर टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो और विल पावर स्ट्रांग हो तो हम क्या नहीं कर सकते दोस्तों. ये मैंने सीखा आज बाल गंगाधर तिलक जी से. वो वैल्यूज और वो एथिक्स जो उस समय मौजूद थे हमें आज भी अपने जीवन में लेके आने हैं दोस्तों, ताकि हम भी अपने जीवन को सफल बना सके. मैं लूंगी आपसे इजाजत और फिर मिलूंगी पुराने स्तंभ जी के साथ नई कहानी में. सुनते रहिए रेडियो पुणेरी आवाज 107.8. खुश रहो, खुशियां बांटो.

चल चल चल मेरे कंप्यूटर, चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: या मेरा खुशी का जो क्वोशेंट है वो स्टेबल रहे। ये कैसे संभव है, इन्हीं सब बातों के बारे में आज फिर चर्चा शुरू करते हैं। हमारा सौभाग्य है, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, जब खुशी की बात करते हैं तो एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। हमने बहुत सी बातें की जो जीवन से जुड़ी थी, मेरी खुशी से जुड़ी थी। हमने ये देखा कि खुशी जब लोगों पर डिपेंड कर रही थी कि वो खुश होते हैं, चाहे वो मेरे बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड है, मेरा बॉस है, तो मैं खुश हो रही थी। अगेन वो डिपेंडेंसी जो थी, और वो कहीं ना कहीं उनका खुश होना या ना होना मेरी किसी बात से मेरा अपना फेलियर बन रहा था, और मेरी अपनी जो खुशी थी वो छिन रही थी। और दूसरा, हमने जो पिछली कड़ी को देखा था उसमें बात की थी मटेरियलिस्टिक चीजों की। दे वर एक्चुअली गिविंग मी लॉट ऑफ हैप्पीनेस टिल द टाइम यू टोल्ड मी कि वो पर्टिकुलर चीजें खुशी नहीं दे रही, मैं खुशी का थॉट क्रिएट कर रही हूँ। यहीं पर हम बात थी। वंडरफुल। अब यहां तक हम बात पहुंची थी कि वो थॉट मैंने क्रिएट किया कि ये मुझे मिल गया है तो मुझे खुशी हुई। लेकिन अभी तक बात ये हो रही थी, ज्यादातर लोग जो हम जो सोचते हैं वो ये कि खुशी एक फीलिंग है, तो क्रिएट करना और नॉन क्रिएट करना थॉट कैसे होगा फिर? सो यहां से आज हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं कि खुशी क्या है, एक फीलिंग है या एक थॉट है?
1: गुड वन। खुशी क्या है, एक फीलिंग है या एक थॉट है? खुशी ऑब्वियसली एक फीलिंग है, इट इज एन एक्सपीरियंस दैट आई गो थ्रू। अब लेकिन ये फीलिंग क्रिएट करने के लिए सोर्स तो चाहिए ना। फीलिंग कहाँ से क्रिएट हो रही है? यस, इट्स अ फीलिंग। आई एक्सपीरियंस बहुत सारी फीलिंग्स सारा दिन के अंदर। कभी फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, कभी आई एक्सपीरियंस पेन, कभी आई एक्सपीरियंस एंग्जाइटी। लेकिन ये फीलिंग्स किस आधार पर मैं अनुभव करती हूँ, इट इज बेस्ड ऑन उस पल मैंने कौन सा थॉट क्रिएट किया है।
0: ओके, आई सी अ फ्लावर, बहुत सुंदर एक फूल देखा मैंने।
1: इट डजंट गिव, इट गिव्स यू अ गुड फीलिंग, राइट?
0: इट गिव्स मी सो मच ऑफ अ, यू नो, लाइक सच नाइस।
1: पहले आप एक थॉट क्रिएट करते हो, कितनी ब्यूटीफुल फ्लावर है।
0: मुझे तो पता भी नहीं कि मैं करती हूँ।
1: अगर किसी को वो थॉट नहीं क्रिएट करेगा, अब वही फ्लावर आपको बहुत अच्छी फीलिंग दे रहा है। आई मे बी कि मैं उसको क्रॉस करके चली जाऊं और मेरे को कुछ लगे ही ना। फ्लावर तो वही है, मुझे उसने कोई फीलिंग नहीं दी। यू नो, आई मे जस्ट नॉट इवन रियलाइज कि यहाँ पर बहुत सुंदर फूल पड़े हुए हैं, एंड आई विल जस्ट क्रॉस एंड आई विल गो अवे, क्योंकि मैंने उस फ्लावर को देख कर रुक कर उसके ऊपर थॉट नहीं क्रिएट किया, तो फीलिंग नहीं जेनरेट हुई उसके बाद। आप रुके, कॉन्शियसली एक थॉट क्रिएट किया कि ब्यूटीफुल फ्लावर, बहुत अच्छा कलर, फ्रेग्रेंस कितनी अच्छी है, या यू नो कितना वट एवर जो जो थॉट्स क्रिएट करते
0: हैं। बोलते हैं हम, एक बार फीलिंग आ जाती है उसके बाद हम बोलते हैं,
1: राइट? तो पहले थॉट क्रिएट किया,
0: अच्छा,
1: फिर फीलिंग
0: थॉट क्रिएट करना, तो आई एक्चुअली
1: डोंट। एक दिन उसको ऑब्जर्व करना, क्या होता है, प्रोसेस तो यही चल रहा है, हमें तब रियलाइज आता है आफ्टर इट कम्स आउट इनटू वर्ड्स, राइट? प्रोसेस तो वही चल रहा है। अब उसी टाइम जो हमने पिछली बार भी देखा, वही फ्लावर है, वो फ्लावर अभी तक उतना ही सुंदर है। आप भी उन फूलों के सामने ही बैठे हैं, आप थॉट क्रिएट कर रहे हो, सच फ्लावर्स, यू आर फीलिंग गुड, उतनी देर में आके किसी ने कुछ कह दिया, माई थॉट चेंजेस, मुझे ऐसा क्यों बोला, फीलिंग चेंज हो गई।
0: हाँ, इनफैक्ट उसके बारे में ध्यान ही नहीं खत्म हो गया। यस,
1: थॉट चेंज हो गई ना।
0: ओ यस, मैं फ्लावर को देखते देखते भी मुझे कुछ और याद आ जाता है।
1: हाँ?
0: तो वो फ्लावर खत्म ही हो जाता है।
1: आपके आंखों में आंसू आ सकते हैं। आपको ये याद आ सकता है कि आपके हस्बैंड पहले व्हेन यू वर गोइंग अराउंड ही यूज्ड टू बाय सच ब्यूटीफुल फ्लावर्स फॉर यू,
0: स्टार्ट क्राइंग। यस, ऑफ कोर्स,
1: अब तो वो नहीं लेकर आते हैं, व्हाटएवर। तो फ्लावर तो वही है ना, उस फ्लावर को ही देख देख के आप कितने अलग अलग अलग तरह के थॉट्स क्रिएट कर सकते हो, और जिस क्वालिटी का थॉट क्रिएट करते जाओगे उसी तरह की फीलिंग एक्सपीरियंस होगी। फीलिंग मेरा एक्सपीरियंस है। लेट्स से आई से कनुप्रिया इज अ वंडरफुल पर्सन, तो मुझे कैसा फील होगा?
0: ओह वेरी गुड,
1: वेरी गुड। इफ आई से कनुप्रिया सच अ चीट, तो कैसा फीलिंग क्रिएट होगा? तो वो फीलिंग की क्वालिटी किस पर डिपेंडेंट है? जो थॉट क्रिएट की, आप वही है, वो फूल वही है, दुनिया वही है, मैं उसके प्रति जो संकल्प क्रिएट करूंगी मेरी फीलिंग उस हिसाब से चेंज होती जाएगी। एंड दैट्स व्हाई हम सारा दिन पूरी जीवन कैसा फील करना चाहते हैं

0: वो किस पर डिपेंड करेगा?
1: मेरे थॉट पर. लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या हो रही है एक्चुअली, इफ यू आर सेइंग दैट, क्योंकि मेरे सामने ऑब्जेक्ट आता है और फीलिंग आ जाती है, वो बीच का थॉट दिखता नहीं है मुझे. जैसे गाड़ी आई तो मुझे फीलिंग आई, वाओ दिस, लाइक यू गेट दिस फीलिंग, दिस इज माय यू नो कार. यस, उससे पहले मैंने थॉट तो क्रिएट किया, दिस इज माय कार,
0: आई हैव अचीव्ड द कार, दिस इज माय कार. तो थॉट तो क्रिएट किया ना. फीलिंग डिफाइंड नहीं होती है. फीलिंग होती है फीलिंग वेरी गुड, फीलिंग पेन. थॉट बहुत स्ट्रक्चर्ड डिफाइंड होती है. मैंने गाड़ी खरीद ली या कुछ भी, या ये गाड़ी मेरे पास नहीं है, सबके पास है, तो आई फील पेन. या मैंने तो ये गाड़ी इतनी मुश्किल से खरीदी, अब मेरी सिस्टर ने जाके मेरे से भी बड़ी गाड़ी खरीद ली.
1: जेलसी,
0: फीलिंग,
1: वो थॉट आते ही वो जेलसी. ओह,
0: सो फीलिंग इज जेलसी. लेकिन वो क्रिएट करने के लिए थॉट कौन सी मैंने क्रिएट की? अब मेरी सिस्टर ने बड़ी गाड़ी खरीद ली, आई कुड ऑल्सो क्रिएट अ थॉट, हाउ नाइस, शी इज बॉट अ गुड कार, आई विल फील गुड.
1: एप्रिशिएशन,
0: गाड़ी वही है, सिस्टर वही है. मैं किस क्वालिटी के थॉट क्रिएट करती हूँ, उससे मुझे एक्सपीरियंस होगी फीलिंग, फीलिंग गुड और फीलिंग पेन, जेलसी, व्हाटएवर. फिर नाउ अब जो मैं फीलिंग क्रिएट करूंगी, उसके बेसिस पे फिर मैं और थॉट्स क्रिएट करती जाऊंगी.
1: हाँ, और वो हम अवेयर हो जाते हैं.
0: आप सारा दिन किस अवेयरनेस के साथ चल रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखते चाहिए. अब जैसे सपोज हमें पहले नहीं पता था, लेट्स से कि थॉट पहले आती है या फीलिंग, अब सपोज हमें पता चला, अब हमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना. लेकिन सारा दिन आज जैसे जैसे हम लोगों से मिलते हैं, जैसे जैसे हम मार्केट में जा रहे हैं, एक एक चीज देख रहे हैं, आप अगर न्यूज में देख रहे हैं कि कहीं किसी के साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है, कहीं किसी के साथ इनजस्टिस हो रहा है दुनिया में, कहीं एक बहुत इलाके में अकाल पड़ गया है, कहीं बाढ़, तो यू एक्सपीरियंस पेन. यू नो, हम एक्सपीरियंस करते हैं पेन. लेकिन पेन एक्सपीरियंस करने से पहले मैंने क्या किया? मैंने वो इन्फॉर्मेशन ली थी और उसके बेसिस पे थॉट क्रिएट किया था कि अब इन लोगों का क्या होगा, या इन लोगों के साथ ऐसा कैसे हो गया, या इनका अब फ्यूचर क्या है, व्हाटएवर. आई हैव क्रिएटेड अ थॉट एंड दैट बाय प्रोडक्ट ऑफ दैट इज नाउ आई एम एक्सपीरियंसिंग द फीलिंग.
1: बट अमेजिंग थिंग इज सिस्टर शिवानी, वी डोंट इवन रिमेम्बर.
0: एक बार हम अपने अंदर के प्रोसेस को समझ लेते हैं, कुछ भी सारा दिन. कल अगर आप अपनी रूटीन को देखें कि दिन कैसे शुरू होता है, लेट्स से अलार्म लगाया था, बजा, या आपने स्नूज पर लगा दिया, या जो भी उठे, फर्स्ट थॉट क्रिएट होती है, ओ माय गॉड इट्स लेट. नाउ दिस इज वन थॉट. अब इसके बाद मेरा पूरा एनर्जी लेवल एक अलग हो जाता है. यू नो, अब टाइम नहीं है एक्सरसाइज करने के लिए, या अब जल्दी जल्दी बच्चों को उठाओ, या सो सारा फिर एक सीरीज ऑफ थॉट्स उसके बाद क्रिएट होती है. इसलिए कहते हैं ना, आज का दिन अच्छा नहीं बीता, सुबह सुबह किसका चेहरा देखा था, तो वो किसी के चेहरे देखने की बात नहीं,
1: थॉट क्रिएट किया था.
0: क्या थॉट क्रिएट किया था?
1: ओके, अगर लेट भी हो गए तो हम क्या फोर्सफुली एक थॉट क्रिएट करें कि आज दिन अच्छा जाएगा, कोई बात नहीं, या कुछ नहीं होता?
0: क्या होता है अगर एक नेगेटिव थॉट क्रिएट किया
1: तो उसके बाद चेंज. वो तो मैं बता रही हूँ, फीलिंग आती, जैसे मैंने फीलिंग नोट की ना, वो थॉट तो फटाफट दिख जाता.
0: तो फिर उसके बाद आप सडनली फील करेंगे कि पूरे घर का एनर्जी लेवल एक केओस में जाने लगता है. फिर बच्चों को बिना बात के डांट देना, फिर बच्चों ने भी फिर ऊपर से रिएक्ट कर देना, फिर तो वो एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट क्रिएट होता गया, जस्ट बिकॉज आई स्टार्टेड द डे विद अ रॉन्ग थॉट. तो इसलिए हम हमेशा ट्राई करते हैं कि सुबह उठकर जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल 5 मिनट तो अपने साथ बैठे एंड स्टार्ट द डे विद वेरी पॉजिटिव क्वालिटी ऑफ थॉट्स, क्योंकि ये दिन की फाउंडेशन है, इसके ऊपर पूरा दिन बहुत ज्यादा डिपेंड करता है. तो जैसे हम डे का टाइम टेबल बनाते हैं, उस तरह से अगर डे की शुरुआत का टाइम टेबल के थॉट्स कैसे क्रिएट करनी है, और वो करने से हमें अवेयरनेस भी आ जाती है कि आई क्रिएट माई थॉट्स,
1: वो कॉन्फिडेंस भी आ जाता है. यस,
0: आई क्रिएट, आई हैव द पावर एंड आई कैन चूज
1: एंड आई कैन एक्चुअली एनी टाइम चेंज देम ऑल्सो, यू नो. बट देन अगर मैं सपोज लेट उठी हूँ तो तब भी मैं वो 5 मिनट अपने साथ जरूर दूँ.
0: एक्चुअली वो आपको हेल्प करेगा. एक्चुअली हेल्प करेगा. हम सोचते हैं कि 5 मिनट अब कहाँ से निकाले. हाँ. फिर उससे क्या होता है, भले आप 5 मिनट नहीं निकालो, लेकिन आप सारा काम तो वही करोगे, लेकिन कैसे करोगे, और ये सब प्रोसेस करते करते एक्चुअली आपको ज्यादा टाइम लग रहा है अपना काम करने में. लेकिन अगर आप 2 मिनट भी रुक जाओ, चलो आपके पास 5 मिनट नहीं है, 1 मिनट तो है, 1 मिनट कोई बहुत ज्यादा नहीं होता है. 1 मिनट थॉट क्रिएट करे, ठीक है आई एम लेट, बट मैं इसका इफेक्ट अब नहीं क्रिएट करने वाली हूँ. सिचुएशन इज स्टिल इन माई कंट्रोल. क्यों? क्योंकि माई स्टेट ऑफ माइंड इज इन माई कंट्रोल. मैं स्टेबल रहकर अब अपने दिन की शुरुआत करूंगी. आई ओनली हैव टू क्रिएट दिस थॉट.
1: It's actually it's a complete conversation with myself.
0: It is a conversation.
1: Thought is basically a conversation with
0: thought
1: myself.
0: Thought is ki main apni programming kar rahi hu na bar bar. Main thought create kar rahi hu ki haan late ho gaya hai, but it's okay.
1: And this is what I want to know ki what is my thought? It's like it's a conversation with my own self.
0: It is. I'm creating na. To wo sara din aap sara din bhi dekho aapke thoughts kya hain. Ek inner conversation hi to chal rahi hai sara din. Ye bahut bure hain. Inko aisa nahi karna chahiye tha. Ye bahut acche hain. Inke paas jo hai main. Ye kya ho raha hai andar? Hum kisse baatein kar rahe hain? Thoughts matlab jo hum ek inner conversation hi chal rahi hai sara din. To agar late ho bhi gaya hai, wo ek loss ho gaya hai ki mera ek छोटा सा नुकसान हो गया सुबह सुबह के मैं लेट हो गई. बट लेट दैट बी द लास्ट वन फॉर द डे. इसका इफेक्ट मेरे नेक्स्ट पर ना आए. तो एक मिनट रुक के सिर्फ कॉन्शियसली राइट थॉट क्रिएट कर दो उस टाइम. अगर हमने थॉट क्रिएट किया लेट हो गया अब तो सब कुछ गड़बड़ होने वाला है.
1: अब तो बहुत मुसीबत.
0: इट्स माई क्रिएशन.
1: No, another thing which I really like, you know, creating thought was something, you know, like very difficult, but conversation because हमें आदत है. See, conversation क्या
0: आदत है? जब मैं ये अब सपोज आप सामने बैठे हो और मैं कहूँ लेट हो गया सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा अब. दिस इज अ कॉन्वर्सेशन विद योर विद यू. लेकिन आई एम अलोन इन द रूम एंड मैंने कहा लेट हो गया अब तो आज कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है. दिस इज अ कॉन्वर्सेशन विद माई सेल्फ. यही मैं अपने साथ अच्छी वाली कॉन्वर्सेशन भी तो कर सकती
1: हूँ. कोई बात नहीं. इट्स ओके. सी आप अगर मैं लेट हुई होती या आप लेट हो जाए तो आपको मैं ये बोलती ना कोई बात नहीं. इट्स ओके. आई कैन डू इट विद माई सेल्फ.
0: आई कैन डू इट विद माई सेल्फ.
1: नो बट विल इट इफेक्ट.
0: इट विल चेंज योर डे. आपका पूरा दिन बदलेगा जिस जिस क्वालिटी. अगर आपने अपने आप को कह दिया अब तो सब कुछ गड़बड़ होने वाला है
1: तो गड़बड़ होता ही है. फिर
0: होता ही है क्योंकि आप पूरा एनर्जी लेवल ही आपने कहा अब तो सब गड़बड़ होने वाला है. अब तो क्या होगा आज बच्चे भी लेट हो जाएंगे. और थॉट्स का ये है कि एक जो क्वालिटी क्रिएट होती फिर वो सीरीज कंटिन्यू होती जाती है. एंड स्पेशली अगर नेगेटिव जो क्वालिटी क्रिएट होती ना हम अवेयर नहीं है वो बहुत फास्ट चलती है.
1: एक के बाद
0: अब कुछ नहीं होगा अब बच्चे उठेंगे कि नहीं बस तो नहीं आ जाएगी जल्दी करो ना.
1: वो फीलिंग ऑफ क्योस हो जाती है. अगेन आई एम सेइंग कि वो क्योंकि वो थॉट्स इतने फास्ट हैं कि उसके बारे में और फीलिंग जब हिट करती है तब हमें रियलाइज होता है कि कुछ गड़बड़ हो गई है.
0: But by that time we have already drained ourselves of a lot of energy. And ये सिर्फ सुबह लेट उठने के लिए नहीं है. आप कहीं भी ट्राई कर सकते हो कि सडनली ऑफिस में कुछ ऊपर नीचे हो गया. आप देख रहे हैं कि लोग बहुत chaos में जा रहे हैं. कंप्यूटर क्रैश हो गया उस पर कुछ बहुत डेटा था. तुरंत जस्ट टेक दैट वन मिनट एंड से ओके दिस हैज हैपेंड बट आई विल टेक चार्ज ऑफ वॉट आई हैव टू डू नाउ. ये नहीं मतलब आप कॉन्शियस होंगे कि आप कौन सी क्वालिटी ऑफ थॉट क्रिएट कर रहे हैं. जितना हम धीरे धीरे ये करेंगे हमें अवेयरनेस आएगी ये तो मैं क्रिएट करती हूँ. तो जो हम फर्स्ट चीज क्रिएट करते हैं अंदर वो थॉट होती है. और जो क्वालिटी की थॉट उसी क्वालिटी की फीलिंग. ये दोनों में कभी डिफरेंस नहीं आएगा. मतलब आप पॉजिटिव थॉट पॉजिटिव फीलिंग नेगेटिव थॉट अ पेनफुल फीलिंग. ये कभी भी नहीं होगा कि पॉजिटिव थॉट एंड पेनफुल फीलिंग. ये तो मैच ही नहीं करता बिल्कुल.
1: So, जहाँ पे भी हमारी कोई फीलिंग नेगेटिव हो रही है हमें ढूंढना है कि वो थॉट क्या.
0: एब्सोल्युटली. सो यू गेट द क्रक्स ऑफ इट. अब क्या होगा बाहर परिवर्तन लाने की बजाय अगर मैं दर्द में हूँ इवन अगर मुझे लगे कि आपने ऐसा किया इसलिए मैं दर्द में हूँ. आपने किया लेकिन मैं थॉट क्रिएट कर रही हूँ. तो अगर मुझे अपने दर्द से बाहर निकलना है मुझे सिर्फ धीरे से बैठकर प्यार से अपनी थॉट की क्वालिटी को चेंज करना है आपके प्रति. मैं आपके बारे में सोच रही हूँ. जैसे जैसे मैं अपनी क्वालिटी को चेंज करती
1: हूँ. कोई बात नहीं उन्होंने कह भी दिया तो कुछ नहीं होता बिकॉज उन्होंने एक बार ऐसे भी तो कहा था. यू नो लाइक
0: सेल्फ काउंसलिंग.
1: या दिस इज अ फुल फ्लेज्ड कॉन्वर्सेशन.
0: एब्सोल्युटली. एब्सोल्युटली.
1: एंड आई जस्ट हैव टू डू दैट.
0: आई जस्ट हैव टू डू दैट. जैसे ही मैंने अपनी थॉट की क्वालिटी को चेंज करना शुरू किया
1: तो उसमें मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा.
0: हाँ. और सारा दिन जो दर्द में जीते हैं उसका क्या हो रहा है.
1: यू नो लाइक अगेन. एंड कई बार ये भी कहते हैं कि अपने आप को धोखा नहीं दे रहे.
0: क्या धोखा तो नहीं दे रहे. अपनी क्वालिटी ऑफ थॉट्स को चेंज कर रहे हैं. सामने जो व्यक्ति है वो वैसा ही है. परिस्थिति वैसी ही है. मेरा उसके प्रति क्या परसेप्शन है उस हिसाब से आई विल क्रिएट द थॉट.
1: एंड अनदर थिंग इज कि वो हर व्यक्ति में पॉजिटिविटी तो है ही.
0: वो तो कोई
1: तो मेरे को अगर मैं कितना भी धोखा दे दिया हो कितना भी किया हो इफ आई एम एबल टू यस.
0: एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज नॉट अबाउट अदर पीपल.
1: इट्स माई
0: इट्स मोर अबाउट हाउ आई वॉन्ट टू फील. अब मैं क्या सपोज अभी लेट्स लुक एट इट लाइक दैट कि सपोज मेरे आसपास सारे जो लोग हैं वो गंदे हैं खराब है, यू नो लाइक वी से कि इनके तो सारे ही खराब हैं सारे, तो उनकी वजह से मैं दर्द में रहूं क्या सारे जीवन? आई स्टिल हैव द, यू नो आई स्टिल हैव द कंट्रोल, आई कैन क्रिएट द राइट काइंड ऑफ थॉट इफ आई वॉन्ट टू फील गुड. और सारे लोग भी मेरे साथ आसपास अच्छे होंगे, लेकिन मेरी ही थिंकिंग अगर नेगेटिव है तो मुझे कोई भी अच्छा नहीं लगने वाला. लोग वही है, एंड एक्चुअली तो लोग वही होते हैं जो है, विद ऑल देयर अप्स एंड देयर डाउन्स, देयर स्ट्रेंथ्स एंड देयर वीकनेसेस. लेकिन मेरा दृष्टिकोण मेरी थॉट को डिटरमिन करेगा, फिर मेरी फीलिंग उससे जेनरेट होगी, एंड जैसी जैसी मेरी फीलिंग्स जेनरेट होंगी उन लोगों के प्रति मेरा एटीट्यूड बनता जाएगा. ये तो है ही ऐसे,
1: वो एक पूरा पूरा का पूरा एक मैंने वो बना लिया, यू नो, एक यस आई कैन अंडरस्टैंड,
0: एक चेन बनती जाती है ना. ये है हमारा प्रोसेस, एक प्रोडक्ट का प्रोसेस जो अंदर चल रहा है सारा दिन, एंड समटाइम्स वी आर नॉट अवेयर कि ये प्रोसेस अंदर चल रहा है, कि मैं एक थॉट क्रिएट करती हूँ, एक संकल्प, उसके बेसिस पे फीलिंग्स मेरे अंदर जेनरेट होती हैं, एंड जो फीलिंग्स मैं किसी के भी प्रति या परिस्थिति के प्रति क्रिएट करती रहती
1: हूँ. oh, yes. किसी ने मुझे एक बार पेन दी, फिर दूसरी
0: किसी
1: बार
0: ने
1: पेन
0: मुझे
1: दी.
0: एक बार पेन नहीं दी,
1: अगेन मैंने क्रिएट किया.
0: मैंने नहीं, अगेन नहीं, बहुत डिफरेंस है दोनों चीजों में.
1: मतलब मुझे फीलिंग आई, ओके लेट्स टेक दिस,
0: यू नो दिस आर वोकैबुलरी मेक्स ऑल द डिफरेंस. नाउ यू आर सेइंग किसी ने मुझे एक बार पेन दी, दो बार दी, किसी ने नहीं दी, मैंने एक बार पेन क्रिएट की,
1: ली भी नहीं, क्रिएट की. Oh yes, it's very important how I, you know, I have to understand.
0: This is also your conversation, na? ये आपकी conversation चल रही है. अगर आप बोलोगे किसी ने मेरे को एक बार pain दी, दो बार दी, तो आप अपने आप को क्या कह रहे हो?
1: कोई और बाहर से ही देता है हमेशा मुझे. Yes.
0: Change your conversation. मैंने एक बार pain create की. It's okay, I'm creating. लेकिन मुझे awareness होगी. मैंने एक बार pain create की, दो बार की, तीन बार की. अब मेरा धीरे धीरे वो attitude बन गया.
1: और उस व्यक्ति के प्रति, और वो फिर गुस्से का, hatred का, मतलब hurt का, जो भी चीजें हैं वो बनती है,
0: जो depending on मैंने उनके प्रति क्या सोच क्रिएट की, फिर मेरे अंदर जो फीलिंग जेनरेट की, फिर मैंने एटीट्यूड उनके बारे में बता दिया. वो तो जैसे हैं
1: वैसे ही हैं वो.
0: अब उसी इंसान को लेकर कोई और व्यक्ति बहुत अच्छी फीलिंग जेनरेट कर सकता है. वो व्यक्ति तो वही है. सपोज आप एक वही है, लेकिन आप ही को लेकर अलग अलग लोग अलग अलग फीलिंग्स क्रिएट करते होंगे, और फिर अलग अलग लोगों का आपके प्रति अलग अलग वृत्ति या एटीट्यूड है. आप तो वही है, तो आप उनके अंदर घुस के नहीं क्रिएट कर रहे, लेकिन मैं आपके बारे में जो सोच रही हूँ, अब मेरा एटीट्यूड आपके बारे में बन गया. तो थॉट्स, फीलिंग्स, एटीट्यूड, और अब जैसे मेरा एटीट्यूड होगा वैसे फिर मैं आपसे बात करूंगी, वैसे मेरा व्यवहार होगा ऑटोमेटिकली. तो वो मेरा एक्शन में आया, मुझे दिखाई तब देता है जब एक्शन में आ जाए,
1: मैं बोल देती हूँ. यस,
0: जब मेरा एक्शन में आता है. जो लोग मुझे अच्छे लगते हैं, मैं हमेशा ही उनसे अच्छी तरह से बात करती हूँ. वो आज गुस्सा भी कर रहे होंगे ना, मैं फिर भी उनको समझूंगी, कोई बात नहीं. मैं गुस्सा क्यों? क्योंकि मेरा एटीट्यूड उनके प्रति है ये बहुत अच्छे हैं. लेकिन अगर मेरा एटीट्यूड आपके प्रति है कि ये मुझे उतने पसंद नहीं है या ये
1: अच्छे
0: नहीं है
1: आपके लिए, तब भी मैं कहूंगी इसमें कुछ, यू नो लाइक
0: माय बिहेवियर विल चेंज. तो वो जो मेरा एक्शन है वो बेस्ड है मेरे एटीट्यूड पर जो मैंने आपके प्रति क्रिएट किया. तो हम जब एक दूसरे को या अपने आप को देखते तो हम एक्शन लेवल पर देखते हैं, वर्ड्स या कर्म पे. ये तीन प्रोसेस पहले ही अंदर हो गए होते हैं, थॉट, फीलिंग और एटीट्यूड. और कोई भी एक्शन बार बार जब रिपीट होता जाएगा तो वो बन जाएगा हमारे
1: हैबिट.
0: एक बार मैंने आपसे गुस्से से बात की, दूसरी बार गुस्से से बात की, चार बार की, अब मेरी आदत बन गई है गुस्से से बात करना.
1: आपके साथ तो करना ही, या जनरली भी बन जाएगी?
0: जनरली भी. फिर वो जब एक के साथ बनेगी, आदत बन रही है ना,
1: तो वो सिचुएशन कभी भी आई तो मुझे गुस्सा ही आएगा.
0: और धीरे धीरे वो मेरी आदत बन रही है. अभी क्या हुआ, हमने ऑफिस में कहा कि गुस्से से ही काम कराना पड़ता है, एटीट्यूड है, गुस्से से ही काम होता है. तो मैंने गुस्से से बात की, गुस्से से बात की, काम होता गया. लेकिन वही आदत लेकर मैं घर जाती हूँ शाम को, तो फिर बच्चों से भी कैसे बात करूंगी?
1: गुस्से के बिना तो काम नहीं.
0: गुस्सा करेंगे ना तभी ये पढ़ेंगे, क्योंकि आदत बन गई है. तो आदत मेरे से सेपरेट होकर घर नहीं जाती है फिर. फिर वो मेरा आदत मेरा पैकेज है, मेरी पर्सनालिटी का हिस्सा है. oh, मेरे साथ हर जगह जाएगी,
1: तो मैं ही खराब होगी फिर. इन द सेंस मैंने अपने लिए गलत कर लिया.
0: यस, एब्सोल्युटली.
1: इट वॉज आदत मेरी उस पर्टिकुलर व्यक्ति या सिचुएशन के लिए नहीं रह गई. इट इज लाइक माय पार्ट ऑफ द पर्सनालिटी.
0: दिस इज माय पर्सनालिटी. अब मेरी जो सारी आदतें पुट टुगेदर इज माय पर्सनालिटी. इट्स माय पर्सनालिटी. तो मेरी पर्सनालिटी कहाँ से बनी, जो मैं एक एक थॉट क्रिएट करती
1: हूँ। ओहो, तो गलती तो उनकी थी, पर्सनालिटी मेरी खराब हुई।
0: गलती उनकी थी, लेकिन मैंने थॉट किस क्वालिटी की क्रिएट की,
1: वो मैं ओके
0: सी अगेन,
1: कुछ भी करते रहे,
0: मैं जो थॉट क्रिएट करता हूँ वो मेरी पर्सनालिटी बनती है। जिस दिन मुझे ये रियलाइज हो गया तो मेरा सारा अटेंशन किस पर चला जाएगा,
1: जो मैं थॉट क्रिएट कर रहा हूँ। ऑफकोर्स
0: हम कर क्या रहे हैं, दूसरे की पर्सनालिटी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन दूसरे की पर्सनालिटी को क्रिटिसाइज करते करते
1: अपनी
0: करते
1: पर्सनालिटी खराब हो गई है, तो
0: क्योंकि वो क्वालिटी ऑफ थॉट्स क्रिएट होती गई ना।
1: तो वो तो मैं जो एक विक्टिम बन रहा था, तो मैं एक्चुअली विक्टिम बन गया, क्योंकि मैंने अपनी पर्सनालिटी को ही खराब कर
0: दिया। इमोशनल अब्यूज ये हुआ ना सर, तो मेरी पूरी पर्सनालिटी अंदर कमजोर हो गई, कमजोरियां देखते देखते देखते देखते, औरों के ऊपर ब्लेम करते करते करते अपना पावर खत्म हो गई, ये मेरी पर्सनालिटी बन गई।
1: यस,
0: Started with my thoughts.
1: And which was justified, you know, my feeling at that time.
0: Now the last stage, which is even more important, कि जो आपकी personality बन गई, उसी तरह से तो आप interact करोगे लोगों के साथ, वही energy तो आप बाहर दुनिया में भेजेंगे, और वैसे ही फिर outcome आपके साथ होते जाएंगे। अगर आप sensitive personality हैं, तो आपके साथ फिर जो होता जाएगा, वो भी किस basis पर होगा?
1: कि आप कैसे हो? हाँ.
0: So जिसको हम कहेंगे, जो कर्म आप करेंगे उसी का रिटर्न आपको मिलेगा, मतलब जो आपकी क्वालिटी ऑफ पर्सनालिटी है, दैट विल देन क्रिएट योर डेस्टिनी, क्योंकि जो आप फिर सेंड आउट करेंगे उसी का रिटर्न आपको मिलेगा। तो डेस्टिनी क्या है? डेस्टिनी है कि मेरे साथ जो होता जाता है, हाँ, उसी को हम डेस्टिनी कहते हैं।
1: मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है?
0: हाँ, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मेरे साथ ये, मेरे भाग्य में है, तो ये मेरी डेस्टिनी है। लेकिन हम आज दिन तक एक स्लीपिंग मोड में जो चल रहे थे, कि वो कि मेरी डेस्टिनी कहीं और लिखी जा रही है, कोई और लिख रहा है, लेकिन मेरी डेस्टिनी तो हर स्टेप पे मैं क्रिएट कर रही हूँ, क्योंकि जो कर्म मैं करती उसी का फल मुझे मिलता
1: है। हाँ।
0: जब फल मिलता तो हम कहते ये मेरी डेस्टिनी है, ये मेरा भाग्य है, लेकिन दैट इज ओनली अ रिजल्ट ऑफ
1: माई ओन
0: जो मैंने भेजा है बाहर।
1: ओह, सो मतलब जैसी मेरी पर्सनालिटी है वैसा ही मुझे मेरी डेस्टिनी हो जाएगी।
0: सो डेस्टिनी मेरी कहाँ से शुरू हुई? फिर
1: कहीं ना कहीं पर्सनालिटी मेरी अलग थी और डेस्टिनी मेरी कुछ और होती थी एक्चुअली।
0: हाँ, जैसे कि
1: मतलब प्रोफेशनली मुझे कहाँ कहाँ मिलेगा, हम भाग्य की जहाँ बात करते हैं वो हम कुछ और बातें करने लग जाते हैं, लेकिन मेरी पर्सनालिटी जो है वो तो अगेन यू नो लाइक आई यूजुअली
0: यू नीड टू थिंक, वी कुड प्रोबब्ली डिस्कस ऑन दिस लॉन्गर, बट जस्ट टर्न ऑन इट। इसको आप सोचते जाओ कि जब हमने एक बार एक लॉ तो हमें समझ में आ गया कि जो कर्म हम करेंगे उसी का फल हमें मिलेगा। कर्म अब हमें समझ में आया हमारी सोच से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि थॉट, फीलिंग, एटीट्यूड, एक्शन, हैबिट, पर्सनैलिटी, जो करेंगे उसी का फल मिलेगा। डेस्टिनी मींस जो फल मिल रहा है। इट कुड बी ऑफ द कर्म जो मैंने आज किया, इट कुड बी ऑफ बहुत पहले का, लेकिन मिल वही रहा है
1: जो मैंने किया है।
0: राइट, जब वो मिलता है तुरंत नहीं पता चलता कि ये जो मैंने अभी अभी किया था उसी का मिल रहा है, लेकिन अगर ये मुझे क्लियर है कि जो मिल रहा है इट्स ओनली अ रिजल्ट ऑफ जो मैंने बाहर भेजा था, तो आई अंडरस्टैंड कि मेरी डेस्टिनी कौन क्रिएट कर रहा है। मैं क्रिएट कर रहा हूँ, और कर्म मैं किस क्वालिटी का क्रिएट कर रहा हूँ, जिस क्वालिटी की मेरी थॉट है।
1: तो अगेन एक डिस्क्रिपेंसी अभी है जिसमें हम डिस्कस करना बाकी है, वो हम करेंगे कि पर्सनालिटी जो मैं हूँ, जो मेरा एटीट्यूड है, जो मेरी हैबिट्स हैं, जो मेरी पर्सनालिटी है, वो मेरी डेस्टिनी कैसे क्रिएट करती है, इसको अभी हम करेंगे। लेकिन उससे पहले का आई थिंक आई एम प्रीटी क्लियर, आई थिंक लोग भी क्लियर हैं। तो ये कि जहां मुझे फीलिंग आई, चलिए हम अभी थॉट पे जाते भी नहीं, मुझे फीलिंग आई, उससे पीछे अगर मैं जाके देखती हूँ कि वो कौन सा थॉट था जिसने मुझे वो फीलिंग क्रिएट की, तो मेरा वो थॉट मेरे सामने आ जाएगा।
0: एक चीज करेक्ट करूं, फीलिंग आई नहीं, अभी ऐसा
1: फीलिंग, हाँ
0: फीलिंग आई,
1: फीलिंग जो यहाँ से आई, जो फीलिंग यहाँ से आई, अच्छा फॉरगेट अबाउट यहाँ से आई या यहाँ से आई,
0: नो नो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट,
1: देयर इज अ फीलिंग, आई एम फीलिंग बैड, आई एम फीलिंग गुड,
0: इट्स एन एक्सपीरियंस,
1: यस, यू नो। तो वो जो अनुभव है वो हम सब अनुभव कर रहे हैं, हम हर्ट का, हम जेलसी का, हम हैप्पीनेस का, हम एक्साइटमेंट का, सबका अनुभव कर रहे हैं। वो अनुभव आते ही हम रुक जाएं और हम उस थॉट के पास जाएं कि किसने वो थॉट क्रिएट किया, वो थॉट मेरी फीलिंग के साथ जुड़ा और फिर वो एटीट्यूड बना, दैट वी कैन एक्चुअली सी, दिस कैन बी, दिस इज विजिबल, चाहे वो मेरे बॉस के साथ था, मेरे बच्चों के साथ था, मेरे हस्बैंड के साथ था, किसी के साथ भी था, वो एटीट्यूड मेरे साथ रहा, मेरे हर बार में, हर इंटरेक्शन में भी रहे,
0: तो एक्शन में आ गया ना.
1: हाँ,
0: एक्शन में,
1: हर इंटरेक्शन में उनके साथ आते ही मेरा वो एटीट्यूड, चाहे वो गुस्से का था, प्यार का था, यू नो इमोशनल का था, हर्ट का था, जेलसी का था, वो इंटरेक्शन में आ जाएगा. दैट बिकम्स माई कर्म.

0: फिर हाँ वो तो एक्शन में आ गया एंड वो ही एक्शन बार बार करने से हैबिट बन गई.
1: और वो हैबिट सिर्फ उसी पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ नहीं रह गई, वो मेरी एक्चुअली दिस इज अमेजिंग यू नो कि ये मेरी पूरी सबके साथ इंटरेक्शन में ऐसा होने लग गया.
0: नेचुरल है ना, मेरी आदत बन जाएगी उस
1: क्योंकि
0: तरह
1: वो
0: से.
1: एंगर मैंने एक के साथ किया तो वो हर बार सिचुएशन आती है, मुझे आदत यही हो गई कि इसी को सॉल्व ऐसे ही करना है. सो इट बिकम्स माय हैबिट
0: राइट
1: एंड देन माय हैबिट ऑफ कोर्स इज माय पर्सनालिटी कंसोलिडेटेड. लाइक सारी जो हैबिट्स को मिला लेती हूँ वो ये तो पता है हमें कि वो पर्सनालिटी जो है मींस व्हाट आर माय हैबिट्स यू नो हाउ आई हैंडल एवरी सिचुएशन इज माय पर्सनालिटी. बट how my personality actually becomes or writes my destiny is what I need to explore. Lekin usse pehle ye jo puri cycle humne dekhi hai aur thought, feeling, attitude and then habit and then personality. Ye jo chhe cheeze hamare samne aayi, teen andar, teen bahar. You know, inke upar hum kaam kar sakte hain. Thank you so much. It's amazing. You know,
0: because
1: yes, we have been talking about it. But then to really, you know, go deep into it and try to understand meri practical life mein, meri practical situation mein kahan kahan ye cheez aayi. Om Shanti. Koi baat, koi sawal aapke paas hai, khula manch hai, khul kar baat kar sakte hain. Aap hame phone kariye ya phir aap hame email bhi kar sakte hain. Hamare phone numbers hain 0124-266-7000, 9999-344-555, 9999-344-666, 9873-666-555. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में इन दिनों हैप्पीनेस इंडेक्स को हम देख रहे हैं कि कौन सी ऐसी बातें हैं जिन पर मेरी हैप्पीनेस डिपेंड कर रही थी और कैसे मैं उस डिपेंडेंसी को वापस लेकर अपने हाथ में ले सकता हूँ. बहुत सी बातें अभी बाकी करनी है. मेरी पर्सनालिटी जो कई चीजों से बनी है, कई प्रोसेस से गुजरी है, वो पर्सनालिटी कैसे मेरा भाग्य लिखती है, कैसे मैं अपना भाग्य खुद लिख सकता हूँ, इस पर बातचीत करेंगे आने वाली कड़ी में. आपका साथ इंतजार करेंगे और अभी आपसे विदा लेते हैं. ओम शांति.

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब्ड हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारी थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट, जस्ट द अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाइट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 crore सेल्स है, दिस द ब्रेन, ओके, 10,000 crore सेल्स। एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 crore सेल्स आर, ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 मोर सेल्स इन द बॉडी, 10,000 crore सेल्स इन द ब्रेन इंटू 10,000, दिस इज द ह्यूमन नेटवर्क, सो मेनी स्विचेस कनेक्टेड टू सो मेनी स्विचेस। अब जब इतने स्विचेस से कनेक्टेड होते हैं तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसका इफेक्ट कितना लंबा जाएगा। तो जब ब्रेन में 10,000 crore सेल्स कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स, ईच सेल कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स इन द बॉडी, एंड हर थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसका ब्रेन पर असर पड़ रहा है, ब्रेन से फिर वो केमिकल सिक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है, और हमने कितने आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे। अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर, उस समय याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते हैं वैसे करना।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की जोड़ में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमारीज। कौन हूं मैं, इस सफर पर हम चले हैं इस पूरी श्रृंखला में। मैं कौन हूं ये जानने की हमने कोशिश की, सेल्फ अवेयरनेस क्यों जरूरी है और कैसे किया जा सकता है ये भी जाना हमने पिछली कड़ी में। लेकिन एक और बात है जो जाननी बहुत जरूरी, वो ये कि इस पूरे सफर में, ये जो हम जर्नी कर रहे हैं, इसमें क्या क्या कठिनाइयां सामने आती हैं, कौन सी ऑब्स्टिकल्स हैं जो कहीं ना कहीं इस अवेयरनेस के प्रोसेस को रोकती हैं। और एक बात जो सामने आई थी वो थी ईगो। कई बार कहा जाता है कि ईगो अच्छी भी होती है। ईगो क्या है, क्या हम सही मायने में अपनी ईगो को जानते हैं? यही सारी बातें हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी, आपका स्वागत। ये हम जान गए आपसे बात करके कि किस तरह से हमारा एक थॉट जिस तरह से जनरेट होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, हमारी डेस्टिनी को बदलता है। कुछ प्रोसेस हमारे अंदर होता है, कुछ बाहर चल रहा होता है। थोड़ा सा एक बार फिर हम रिपीट कर लें कि किस तरह से हमारे जो थॉट्स हैं ये पूरी जिंदगी को गवर्न,
1: हर एक संकल्प जो सारा दिन उत्पन्न होता है तो थॉट से फीलिंग जेनरेट होती है। एंड सारी मेरी जो फीलिंग्स हैं किसी व्यक्ति के प्रति, किसी परिस्थिति के प्रति, दोज फीलिंग्स डेवलप माई एटीट्यूड टूवर्ड्स दैट पर्सन। एटीट्यूड फिर मेरा एक्शन में आता है, चाहे वो वर्ड है या एक्शन है, फिजिकल एक्शन। एंड एक एक्शन बार बार रिपीट करने से वो मेरी हैबिट बन जाती है। एंड ऑल माई हैबिट्स पुट टूगेदर इज माई ओवरऑल पर्सनैलिटी। एंड ये पर्सनैलिटी जब हर क्षेत्र पर जाती है तो हर स्टेप पर मेरी डेस्टिनी बनती जाती है। तो थॉट्स से फीलिंग्स से एटीट्यूड एक्शन में आता है, हैबिट बन जाती है, पर्सनैलिटी डेवलप होती है, डेस्टिनी बनती जाती है। तो संकल्प भावना बनाता है, भावना हमारी वृत्ति को बनाती है, वृत्ति कर्म में आती, एक कर्म बार बार करने से एक आदत बनती जाती है और हमारी सारी आदतें हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं और यही व्यक्तित्व कदम कदम पर मेरा भाग्य बनाता जाता है।
0: बहुत सुंदर कि कहाँ से हमारी जो सोच, हमारा
1: तो संकल्प मेरा भाग्य बना रहा है। तो कहीं भी मेरे साथ जीवन में क्या हो रहा है, अगर वो मुझे पसंद नहीं है तो हम बाहर चेंज नहीं करेंगे कि परिस्थिति को कैसे चेंज करें, व्यक्ति को कैसे चेंज करें, हम अपनी सोच को परिवर्तन करना शुरू करते हैं, बिकॉज दैट्स द रॉ मटेरियल।
0: बिल्कुल,
1: तो वहां से स्टार्ट करें, बाय प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट।
0: सामने भाग्य को बदल सकते हैं, कि भाग्य हम बदल सकते हैं। कि हम बात हर बार करते हैं कि भाग्य तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन ये जो पूरी प्रक्रिया है और ये बड़ी लॉजिकल है, इसके पीछे लॉजिक समझ में आता है। कुछ पोर्शन हमारे अंदर चल रहा है, कुछ बाहर सामने आ जाता है, ये हम अच्छी तरह से जान चुके हैं। इसे इम्प्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हमने ये भी जाना था कि पॉजिटिव थॉट्स, क्योंकि जो संकल्प की बात करते हैं वो सही हो, पॉजिटिव हो, उसके लिए वो भी कई चीजों पर डिपेंड कर रहा था।
1: पास्ट एक्सपीरियंसेस, जो पूर्व हमारे साथ कोई अनुभव हुए, इन्फॉर्मेशन जो चारों तरफ से हमारे अंदर ये कर्म इंद्रियों के द्वारा जो अंदर भरता है, जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, और तीसरा हमारी बिलीफ सिस्टम, हमारी मान्यताएं। तो ये तीन चीजें हमारे संकल्पों का सोर्स है। तो ये तीन चीजों की क्वालिटी को चेक करें, थॉट्स की क्वालिटी चेंज हो जाएगी, डेस्टिनी परिवर्तन।
0: हमने पिछली कड़ी में बात की थी कि इसमें जो सबसे बड़ी कठिनाई है वो है हमारी ईगो।
1: राइट,
0: कहीं ना कहीं हम उसे अहम कहें, कहीं अभिमान कहें, अहंकार कहते हैं, ईगो जो बात है क्या एक्चुअली ईगो? ईगो अच्छी भी कई लोग मानते हैं कि ईगो अच्छी होती है।
1: आपको क्या लगता है ईगो क्या है?
0: मुझे ये लगता है ईगो इस अहम है कि मैं सुप्रीम हूं, मुझे सब कुछ आता है, मैं जानता हूँ।
1: Right.
0: मुझे मेरे ख्याल से
1: इसका मतलब अपने आप को सुपीरियर समझना, आई एम द बेस्ट, दैट इज ईगो, राइट?
0: दैट्स व्हाट आई फील।
1: एंड व्हाट इफ अगर हम अपने आप को इन्फीरियर समझे?
0: अगेन व्हाट आई फील, मुझे लगता है कि अगर मैं इन्फीरियर फील कर रही हूँ तो मैं रिएक्ट अपने आप को सुपीरियर शो करके करूंगी, एंड देन अगेन वो भी वही ईगो वाला।
1: दो तरफ से रिएक्शन आ जाएगा ना, सुपीरियर वाला रिएक्शन बाहर आता है ज्यादातर, यू नो, इन द टर्म्स ऑफ अग्रेशन या यू नो लाउड एंगर, और इन्फीरियर जब हम फील कर रहे होते हैं वो रिएक्शन अंदर जाता है, यू नो, विड्रॉ, अपसेट,
0: हर्ट,
1: दैट इज अ रिएक्शन इन साइड। बोथ आर रिएक्शंस एंड बोथ आर ईगो। दोनों केस में ईगो ही है, लेकिन किसी चीज में वो एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ले लेती है, यू नो, और किसी में एक वो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, मैं बहुत ऊंचा हूं या मैं बहुत नीचा हूं। दोनों सच नहीं है और ये दोनों किस लिए हो रहे हैं, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि मैं कौन हूँ.
0: ब्यूटिफुल एक्चुअली, यू नो, बिकॉज हियर आई वॉन्टेड टू आस्क यू समथिंग. जब आपने हर्ट की बात की, इन्फीरियोरिटी की जो बात आ रही है, जो सेकेंड जो इनसाइट जा रहा है, बहुत ज्यादा लोगों को ये मिसकंसेप्शन अगर हम कहें या ये हम कहते हैं, मुझे लगता है बहुत लोग हैं, आई एम वेरी सेंसिटिव,
1: राइट,
0: यू नो, दे ऑलवेज से आई गेट हर्ट वेरी इजीली, दे टेक इट एज अ स्ट्रेंथ, यू नो, कि मैं बहुत, मतलब मैं कितनी नाजुक हूँ या मैं इतना नाजुक हूँ कि मैं बहुत हर्ट हो जाता हूँ, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ. अगेन इट्स अ पेन एक्चुअली.
1: तो ये तो खुद को सोचना पड़ेगा. अगर वो आपको पेन अच्छा लगता है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको पता है वो पेन अच्छा भी लगने लगता है कुछ लोगों को, बिकॉज ये सारे इमोशंस, पेन, हर्ट, ये शरीर में एक केमिकल सिक्रीट करते हैं, जैसे खुशी भी एक केमिकल सिक्रीट करती है. एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम शरीर को उस केमिकल की आदत पड़ जाती है.
0: अभी हमने जो बात की थी, हैबिट,
1: हैबिट, इट्स एन एडिक्शन. इट्स एन एडिक्शन ना, जैसे एक पर्टिकुलर ड्रग हम ले रहे हैं तो मेरे शरीर को उस ड्रग की आदत है. तो अगर वो ड्रग नहीं मिलेगा, आई एम लाइक मुझे चाहिए जल्दी, आई रियली नीड इट. इसी तरह अगर मुझे कुछ नहीं मिलता गुस्सा करने के लिए, या मुझे कुछ नहीं मिलता हर्ट होने के लिए, आई एम लुकिंग फॉर इट. कहाँ है वो जो मुझे हर्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई एम नीडिंग इट नाउ. तो फिर छोटी सी छोटी बात, आई पिक इट अप. अच्छा, आपने ये कह दिया, नाउ आई एम हर्ट, एंड द मिनट आई एम हर्ट एंड देन दैट पेन, एंड फिर वो केमिकल सिक्रीट हुआ शरीर को, वो चीज मिल गई,
0: डिप्रेशन में चला गया,
1: पर मुझे अच्छा लगने लगा, यू नो. बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज हार्मफुल. मैं गलत तरह का केमिकल, गलत तरह का हार्मोन एक अपने शरीर में सिक्रीट कर रहा हूँ. जैसे ड्रग्स लेने की आदत पड़ गई है, वो एडिक्शन है, लेकिन है तो हार्मफुल ना. तो कहीं ना कहीं हमें मेहनत करके उस एडिक्शन को तोड़ना पड़ेगा. इसी तरह एंगर, हर्ट, ये एडिक्शन है, यू नो. ये जो सेंसिटिव हम कहते हैं, आई एम वेरी सेंसिटिव, आई हैव टू आस्क माई सेल्फ वेदर दैट्स गुड. सेंसिटिव होना ये अच्छा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उससे ओवरऑल मेरा इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो गया. बार बार या तो ऐसे या ऐसे, फिर बदलते रहे.
0: एक दलील ये दी जाती है कि आपको सेंसिटिव होना जरूरी है. अगर आप सेंसिटिव हैं, अगर आप समझ रहे हैं दूसरों के दर्द को, या सेंसिटिव हैं, चीजों को समझ सकते हैं, तो आप मैनकाइंड के लिए काम कर सकते
1: वो
0: हैं.
1: वो सेंसिटिव नहीं है, वो कंपैशन.
0: हाँ, ये यू नो दैट्स अगेन अ डिफरेंस, बिकॉज आई कैन फील, यू नो, बिकॉज आई फील द पेन विद इन मी, सो आई बी एबल टू अंडरस्टैंड अदर्स पेन.
1: बट इट्स लाइक सेइंग कि अगर आपको ये बीमारी है तो आपकी बीमारी को ठीक होने के लिए पहले मुझे बीमार होना चाहिए. बट द प्रॉब्लम इज कि अगर मैं बीमार हो गई तो मैं आपका इलाज शायद बहुत जल्दी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि फिर मैं पहले अपना इलाज करना जरूरी हो जाएगा. तो इफ यू आर इन पेन, आई नीड टू बी हेल्दी,
0: यू नो.
1: आई अंडरस्टैंड योर पेन, दैट्स कंपैशन, सहानुभूति, कि हम आपके दर्द को समझ सके और फिर आपके साथ उस अनुसार व्यवहार करें. लेकिन खुद ही दर्द में चले गए तो फिर आपको क्या, आपकी क्या मदद करेंगे? फिर तो मुझे मदद की जरूरत है. सो पेन एंड कंपैशन, दे टू डिफरेंट थिंग्स. तो सेंसिटिव जब हम बोल देते हैं, सेंसिटिव इज इन टू सेंस. सेंसिटिव कि आप दूसरे की चीज को समझते हो, आप अपने आप में इतना ज्यादा, यू नो, ऑब्सेस्ड नहीं हो कि आप दूसरों को समझ नहीं पाते हो. लेकिन सेंसिटिव जब हम ये कहते हैं कि भाई छोटी छोटी बात मुझे हर्ट कर जाती है, दैट्स नॉट वेरी गुड, बिकॉज फिर मेरी स्टेबिलिटी हर एक व्यक्ति के साथ, हर एक परिस्थिति के साथ डिस्टर्ब होती रहेगी, एंड मुझे खुद फिर संभालने की जरूरत है.
0: वंडरफुल, यू नो, द वे यू एक्सप्लेन कि हर्ट या सेंसिटिव होना भी एक ईगो का ही पार्ट है.
1: बिल्कुल.
0: तो दूसरी तरफ हम कहते हैं अहम, अहंकार, जो एंगर है, जो गुस्सा करना, जो लाउड होके दिखाना, और दूसरी तरफ ये हर्ट हो जाना, इंट्रोवर्ट हो जाना.
1: बिकॉज दोनों चीजें, या तो इस तरफ या उस तरफ, इज अबव द नॉर्मल मार्क. सी, आपका पेंडुलम का एक पोजीशन है, या तो हम इस तरफ चले जाते हैं या इस तरफ चले जाते हैं. दोनों केस में हम रियलिटी से दूर जा रहे हैं. सो इसलिए इट्स ईगो. यू नो, ईगो, जैसे आपने कहा आई एम द बेस्ट, लेकिन ईगो जो हमने समझा राजयोग के द्वारा, एक बहुत सिंपल डेफिनेशन के रूप में उसको लेते हैं. थोड़ा सा एकदम से सुनने में थोड़ा सा हैवी लगेगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप उसको लेंगे तो बहुत सिंपल है. इट इज अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज और अ रॉन्ग बिलीफ अबाउट माई सेल्फ. अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज और अ रॉन्ग बिलीफ अबाउट माई सेल्फ,
0: मतलब मैं खुद को जो समझता हूँ, एक गलत मैंने अपनी इमेज बनाई है, उसके साथ मेरा जुड़ाव.
1: यस, कोई एक ऐसा स्वरूप अपने बारे में जो सत्य नहीं है, लेकिन वो स्वरूप बनाकर उसके साथ लगाव हो जाना और उसको ही मैं समझकर चलते
0: प्रोपोगेट
1: जाना,
0: करते जाना, एक्चुअली प्रोपोगेट भी
1: मतलब
0: करना.
1: अपने पूरे जीवन उस मैं के आधार से चलना, और जो असली मैं है वो कहीं ना कहीं छुप जाता है. तो इट कैन बी अटैचमेंट टू अ पर्सन, लगाव एक व्यक्ति से, एक वस्तु से, एक आइडिया से. आई कैन बी अटैच्ड टू एन आइडिया. एंड जब हम अटैच्ड हो जाते हैं तो क्या हो जाता है? जब हम किसी भी चीज से अटैच्ड हो जाते हैं, इट्स लाइक दिस इज माई फोन. इफ आई गेट अटैच्ड टू दिस फोन,
0: आई कांट अफोर्ड टू लूज इट एक्चुअली.
1: दैट्स सेकेंडरी. बट मेन थिंग क्या होती है, जैसे ये फोन है, दिस इज मी लेट्स से, एंड आई गेट अटैच्ड टू दिस फोन. नाउ आई एम नो लॉन्गर दिस,
0: आई एम दिस,
1: आई एम अटैच्ड टू दिस. तो मेरा जो अपना अस्तित्व था
0: वो मर्ज हो गया,
1: वो खत्म हो गया. I have lost, see, it was like this.
0: My identity.
1: Now it's one object. Till I was detached, I was in my own identity. मेरा अपना स्वरूप क्या है? लेकिन जैसे ही मेरा किसी व्यक्ति से, वस्तु से, पोजिशन से, स्टेटस से, किसी भी चीज से लगाव हो गया, खो दिया. और अपना अस्तित्व खोने से मैंने अपने आप को ये समझना शुरू कर दिया. I'm so attached to that I lose my identity in that. और फिर जब मैं अपना अस्तित्व किसी और चीज में खो देती हूँ, तो जब उस चीज को कुछ होता है
0: तो मुझे प्रॉब्लम होती है.
1: तो मुझे होता है.
0: Okay,
1: It's like
0: उस इमेज को प्रॉब्लम होती है,
1: उस इमेज को, क्योंकि मेरी अब जो इमेज है मैं कौन हूँ.
0: Okay.
1: तो वो इमेज एक बन गई. अब उस इमेज को अगर कुछ ठेस पहुंचे किसी भी तरह से, तो मुझे दर्द होगा. I buy a car. बहुत मेहनत की, गाड़ी खरीद ली, गाड़ी से अटैचमेंट हो गई. जैसे लगा गाड़ी में बैठे तो ऐसे लगता है मैं ही हूँ, ये गाड़ी में है. अगर किसी ने आके उस गाड़ी पे एक स्क्रैच कर दिया,
0: मुझे लगा मुझ पे कर दिया,
1: आपके फेस पे आके.
0: यू नो आई हैव सीन पीपल डूइंग एक्चुअली, यू नो
1: व्हाट इज रोड रेज, व्हाट इज रोड रेज दैट इज हैपनिंग. मेरी गाड़ी को मतलब छोटा सा डेंट भी नहीं होता कभी कभी, कुछ भी नहीं होता, लेकिन वो गाड़ी को लगा कैसे?
0: नो पीपल एक्चुअली, हम मैं भी कई बार शायद कहती हूँ आई एम सो अटैच्ड टू इट.
1: वी से इट एंड वी थिंक दिस इज अ पॉजिटिव स्ट्रेंथ. आई एम अटैच्ड टू द कार, आई एम वेरी अटैच्ड टू माय कार. इट्स लाइक सेइंग आई लव माय कार, आई लव माय कार एंड आई एम अटैच्ड टू कार, इज टू डिफरेंट थिंग्स. फर्क कैसे पता चलेगा? अगर मेरी अटैचमेंट है उस गाड़ी से, अगर उस गाड़ी को स्क्रैच लगा, दर्द मुझे होगा. You know, somebody scratches the car and I go, तो स्क्रैच तो उसको किया था ना, ऐसे लगेगा मुझे स्क्रैच कर दिया किसी ने.
0: Actually, you feel that.
1: You feel that pain so strongly. That's because you're no longer this. You're this. तो अगर इस पे स्क्रैच किया, दर्द इस पे होने वाला.
0: And then with that chemical reaction is of course taking place.
1: That is physical pain is there continuously. तो इसलिए इतनी सारी चीजों से हम अटैच हो जाते हैं. गाड़ी तो बहुत छोटी चीज है, व्यक्ति कितने.
0: दिस इज व्हाट आई वांटेड टू कम डाउन टू, कि आई एम सो अटैच्ड टू माय फैमिली, आई एम सो अटैच्ड टू
1: माय हस्बैंड. और हमको लगता है ये अच्छी बात है,
0: वी
1: सो अटैच्ड टू आवर फैमिली, लेकिन अटैचमेंट ही फिर दर्द दे रही है. क्यों दर्द दे रही है?
0: क्योंकि वो वैसे रिएक्ट
1: है ना, एक सारा एक प्रोसेस अंदर जो चल रहा है. तो अटैचमेंट से क्या हुआ, मैंने अपनी आइडेंटिटी खो दी. मैं वो आइडिया बन गई, मैं वो गाड़ी बन गई, मैं वो व्यक्ति ही बन गई. मेरा अपना अस्तित्व खत्म हो गया. जहां अटैचमेंट होगी, पकड़ लिया टाइट, ये मेरा है टाइट, पकड़ लिया, अच्छा भी लग रहा पकड़ते हुए, लेकिन जितनी देर पकड़ा हुआ है क्या होगा अंदर ही अंदर,
0: एक पूरा प्रोसेस,
1: एक रेजिस्टेंस है कि कहीं ये मेरे से कोई इसको
0: छीन ना
1: ले ना जाए. आई विल नॉट, इफ यू वॉन्ट टू कम एंड टेक इट अवे फ्रॉम मी, आप लेने की कोशिश कीजिए. आप जितना खींचेंगे मैं उसको और भी ज्यादा टाइट पकड़ूंगी. आई विल नॉट लेट गो. तो रेजिस्टेंस है, पकड़ लिया टाइट, ये मेरा है, आप मेरे हैं, आप किसी और से कैसे बात कर सकते हैं.
0: यस, पोजेसिवनेस,
1: पोजेसिवनेस, ये मेरा आइडिया है. आप अपना आइडिया कैसे दे सकते हैं? माइन, एवरीथिंग इज माइन, इट्स अटैचमेंट. तो जितना अटैचमेंट होगा रेजिस्टेंस होगा, लेट गो नहीं करेंगे. और जितना रेजिस्टेंस होगा, अब सपोज ये हमने पकड़ा हुआ, किसी ने कहा इसको पकड़ के रखना, छूटना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी पता है ना कि एक ना एक दिन ये
0: छूटेगा.
1: सी द ट्रूथ आई नो. प्रॉब्लम ये है कि सच को जानते हुए भी सच के खिलाफ चलने की कोशिश. मालूम है दिस इज नॉट इटर्नल, आई कैन नॉट होल्ड इट फॉर इटर्निटी.
0: एक्चुअली वो डर भी लगता रहता है ना कि कोई ले लेगा मुझसे.
1: बस दैट्स इट, फियर. सी आई विल होल्ड इट टाइट. मुझे पता भी है कि ये एक दिन गिरने वाला है. सपोज ये 10 दिन के बाद गिरा, ठीक है, लेकिन मेरे 10 दिन कैसे बीते?
0: डर में.
1: डर में कहीं ये गिर ना जाए. 10 दिन के लिए मिला था यूज करने के लिए, इंजॉय करके भी तो यूज कर सकते थे, लेकिन वो 10 दिन कैसे बीत गए? डर में, कहीं ना गिर जाए, कहीं ना गिर जाए, कहीं ना गिर जाए. जब गिरेगा तब दुख होगा, लेकिन 10 दिन कैसे बीते? भय में. तो ईगो इज अटैचमेंट. जहां अटैचमेंट होगी वहां एक रेजिस्टेंस होगी.
0: लेट गो के लिए,
1: लेट गो नहीं, छोड़ेंगे नहीं. और जहां रेजिस्टेंस होगी, किसी चीज को टाइट पकड़ के रखा है, वहां एक डर अंदर ही अंदर बना ही रहेगा, कहीं ये छूट ना जाए. देयर विल बी फियर, फियर ऑफ सो मेनी थिंग्स. सो ईगो वाज अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज. उस रॉन्ग इमेज को पकड़ लिया, उसमें अपनी आइडेंटिटी को
0: मर्ज कर दिया.
1: मैं कौन हूं,

0: बट आई स्पेंड माई एंटायर लाइफ कहीं इनको कुछ ना हो जाए, कहीं इनको कुछ ना हो जाए, कहीं ये मुझे छोड़ के ना चले जाए, कहीं ये शरीर ना छोड़ दे, फियर ऑफ डेथ. सो आई लिव माई लाइफ इन द फियर ऑफ लूजिंग दैट ऑब्जेक्ट ऑफ अटैचमेंट जिससे मेरा अस्तित्व जुड़ा हुआ है. और फिर अगर वो कुछ मुझे कह देते हैं ऊपर नीचे, तब भी हर्ट बहुत जल्दी होता है. ऐसा कहा, मुझे कहा, क्यों? बिकॉज आई एम अटैच्ड. अटैचमेंट नहीं हो, बुरा नहीं लगेगा, बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा. तो ईगो इज अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज, रेजिस्टेंस, फियर. सो ईगो इज
1: फेयर.
0: फियर. कहीं ना कहीं कोई ना कोई डर अंदर बैठा होता है कोई चीज खोने का, और वो फिर एक विकराल रूप लेकर
1: ईगो के रूप में
0: बाहर
1: आता
0: आता
1: है,
0: है.
1: चाहे वो बाहरी तौर से जो हमने बात की या इंटरनल
0: कोई
1: हो.
0: भी, बट इट इज ऑलवेज गोइंग टू गो बैक टू सम फियर दैट इज देयर इनसाइड.
1: दैट्स एक्चुअली यू नो अ बिग चेंज.
0: Are you following it? But do
1: नो
0: you
1: नो
0: feel it
1: यस
0: makes
1: नो नो इट इज
0: its
1: लॉजिकल.
0: process, right? It's a process.
1: यस
0: This is self-awareness. अभी तक हमें ये नहीं पता था. अभी हमें लग रहा था ईगो मतलब जस्ट बाहर है कि ये मेरा बात करने का
1: अहम
0: तरीका है,
1: है और
0: हाँ ये
1: ये
0: मेरी पोजीशन है. लेकिन जब हम वो बाह्य रीति से दिखाते हैं, तो हम कोई ना कोई भय को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं. अब उस भय को पहचानना पड़ेगा, क्योंकि भय हार्मफुल है. फियर विल ऑलवेज कॉज पेन. फियर कभी मुझे हैप्पीनेस नहीं दे सकता. तो अगर हम अपनी लाइफ को हैप्पी, स्मूथ, लाइट बनाना चाहते हैं, वी नीड टू लेट गो. और लेट गो करनी है ये अटैचमेंट्स, लेकिन वो कैसे करेंगे? दैट इज सेल्फ अवेयरनेस.
1: लेकिन उससे पहले एक मैं ये जानना चाहूंगी कि जब हमने बात ये की लेट गो की अटैचमेंट की, तो वर्ल्डली चीजों से, कार से अटैचमेंट है या लैपटॉप से अटैचमेंट है या जैसे रिंग से अटैचमेंट है या मोबाइल से अटैचमेंट है, वो फिर भी एक हद तक हम
0: इजी है.
1: आसानी से तो नहीं होता फिर भी, क्योंकि काफी काम करना पड़ता है उसके बाद, फिर भी हम कह सकते हैं अपने आप को.
0: हम छोड़ सकते हैं.
1: लेकिन जो हमारे लव्ड वंस जिन्हें हम कहते हैं, हमारा पूरा संसार उनके ऊपर चल रहा है, या हमारा थॉट, हमारा आइडियाज, हमारी सोच, हमारा पूरा जिंदगी जीने का तरीका, हमारे आदर्श जिन्हें हम कहते हैं सो कॉल्ड, मतलब हमारे जो पूरे पूरा सिनारियो है, उनके साथ जो अटैचमेंट है.
0: सी, वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अटैचमेंट. क्या अभी तक हम अटैचमेंट को एक पॉजिटिव वर्ड की तरह गिन रहे थे? वो स्नेह है, प्यार है. ये नहीं है कि लव्ड वन से प्यार नहीं होना चाहिए. द डिफरेंस इज आई लव माई फ्रेंड, आई एम अटैच्ड टू माई फ्रेंड. दो डिफरेंट चीजें हैं. इफ आई जस्ट लव माई फ्रेंड, तो आई विल एक्सेप्ट हर एज शी इज. वो जो है, जैसी है, आई लव यू. यू नो, आई जस्ट लव यू कनुप्रिया. आप जैसे हैं वैसे ही हैं. अगर आज आप मुझे कुछ ऊपर नीचे भी कह देते हैं, आई विल से फाइन, नो प्रॉब्लम, ये आपकी सोच है, बट आई नो वट आई एम.
1: अगेन अपनी इनर स्टेबिलिटी को आप चेंज नहीं होने दे रहे.
0: वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए. लेकिन अगर मैं आपके साथ अटैच्ड हूं, तो अगर आपकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है,
1: मेरी तो ज्यादा हो जाती है. हाँ,
0: दैट्स
1: क्योंकि मैं
0: इट.
1: डिपेंडेंट हो जाती
0: हाँ,
1: हूँ.
0: आई एम अटैच्ड ना. सी, वेन इट इज अटैचमेंट,
1: इट इज
0: जो
1: डिपेंडेंस.
0: यहां होगा वो यहां होगा.
1: हाँ, डिपेंडेंस हो जाती है.
0: तो वो एक कहां तक एक अच्छी, हमारे लिए हेल्दी चीज है, वो हमें अपने आप से पूछना पड़ेगा. और जब हम खुद पेन में हैं, दर्द में हैं, तो हम दूसरे को प्यार कैसे देंगे? दूसरे को स्नेह नहीं दे सकते हैं. तो इसलिए डिटैचमेंट इज नॉट अ नेगेटिव वर्ड. लोग डिटैचमेंट समझते हैं कि डिटैच्ड मतलब फिर इनको किसी की परवाह नहीं है, ये दुनिया से दूर हो जाएंगे. दैट इज नॉट डिटैचमेंट. डिटैचमेंट कि दूसरे के मन की स्थिति मेरे ऊपर प्रभाव नहीं डालेगी.
1: हावी नहीं होगी.
0: डिटैचमेंट मतलब चाहे मैं किसी भी परिस्थिति में हूं, मैं अपने स्वरूप को नहीं भूलूं कि मैं कौन हूं. दैट इज डिटैचमेंट. आई डोंट गेट अटैच्ड टू अ पर्सन और टू एन ऑब्जेक्ट. एंड जितना डिटैच्ड होते जाएंगे, ये वास्तविकता है, दिस इज एब्सोल्यूट यूनिवर्सल ट्रूथ, जितना डिटैच्ड होते जाएंगे उतना और प्यार दे पाएंगे.
1: भर जाएंगे क्योंकि अंदर से.
0: क्योंकि खुद भरते जाएंगे ना. आपका, आपको प्यार चाहिए नहीं, आप खुद भरते जाएंगे. दूसरा कुछ कह भी देगा, अभी देखो प्यार पे कमी कहाँ आती है. मैं आपसे बहुत प्यार कर रही हूं, लेकिन अब आपने कुछ मुझसे गलत कह दिया, तो मेरा मूड
1: खराब
0: खराब हो गया. अब मैं आपको वही प्यार दे पाऊं? नहीं. अब मुझे लग रहा है क्यों ऐसे बात की, ऐसा क्यों किया, अब मुझे बुरा लगने लग गया. अब जब मुझे बुरा लगने लग गया, अब मैं आपको प्यार कैसे दूं? मेरी वो स्थिति नहीं है. अ डॉक्टर, ही कैन बी द बेस्ट सर्जन, वो सबको ऑपरेट कर सकते हैं, अपनी फैमिली को नहीं.
1: because he

0: अटैच्ड
1: अटैच्ड, क्योंकि जहां अटैचमेंट आई वहां आपका स्किल भी, आपकी एफिशिएंसी, आप बेस्ट सर्जन है ना, पूरी दुनिया आपके पास सर्जरी की आ रही है, लेकिन आप अपनी फैमिली मेंबर की सर्जरी नहीं कर सकते, कितना बड़ा लॉस है. आपको किसी और सर्जन के पास जाना पड़ रहा है. क्यों? क्योंकि आपकी जो एफिशिएंसी थी वो उस अटैचमेंट के कारण हैम्पर हो रही है. आपका हाथ हिलने लगेगा, इतना स्टेबल हाथ, लेकिन उस अटैचमेंट के कारण हिलने लगेगा.
0: यहाँ सिस्टर शिवानी, इससे जुड़ा एक और जो एस्पेक्ट आता है कि इसका मतलब जो सारी इमोशंस हैं जिन्हें हम कहीं ना कहीं जो हमें परेशान करती हैं, जिसमें क्राइंग भी आ जाता है, यू नो, हर्ट होने की,
1: ये
0: दबा जाने.
1: बिहेवियर्स है. अभी जैसे जो प्रोसेस है सेल्फ अवेयरनेस का, वो है इसको पहचानना सारा दिन, कहाँ अटैचमेंट है, क्या फियर है, किस चीज से अटैच्ड हूँ, लेट गो. दिस इज एन इनर प्रोसेस. लेकिन ये इनर प्रोसेस को पहचानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वी आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड, वी आर मोर अवेयर ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन आउटसाइड. तो हम क्या करते हैं, हम उन बिहेवियर्स को लेते हैं, कौन से ऐसे व्यवहार हैं जिससे मुझे दिखाई दे रहा है ये इनका ईगो है, यू नो, ये मेरा ईगो है. तो उस बिहेवियर को लेते हैं और उस बिहेवियर से फिर बैकवर्ड चलते हैं कि ये मेरा व्यवहार है, किस चीज के डर से मैं ऐसा कर रही हूं, और अगर ये मेरा डर है तो किस चीज से मैं अटैच्ड थी जिसके कारण ये व्यवहार में आया. नॉर्मल अगर हम देखें कौन से अलग अलग बिहेवियर्स हम दिखाते हैं जिससे पता चलता है कि ये ईगो है, कौन से बिहेवियर होंगे सारा दिन में?
0: अगेन एंगर इज,
1: एंग्री,
0: अगर हम बाहरी बात करते हैं तो एंगर तो सबसे बड़ा सामने आता है, और दूसरे को नीचा दिखाने की जो एक कोशिश,
1: बॉसिंग करना, कंपीटिंग,
0: क्रिटिसाइज करना,
1: क्रिटिसाइज,
0: यू नो, लाइक, एंड व्हाट इवन एट टाइम्स आई फील, आई एम टॉकिंग टू यू, लेकिन मैंने ये रियलाइज किया है कि मैं सॉफ्टली ही, प्यार से ही, लेकिन मैं क्रिटिसाइज कर देती हूँ,
1: राइट,
0: बिकॉज मेरे को गलतियां नजर आती हैं.
1: राइट,
0: अगेन आई थिंक दैट इज समवेयर एन ईगो.
1: सही बात है, दैट्स एन ईगो, क्रिटिसाइजिंग, पोजेसिंग, यू नो, क्राइंग.
0: अच्छा, इट्स एन ईगो,
1: या इट इज
0: इंटरनल,
1: इंटरनल ना, तो वो इंटरनल उस रूप में आया,
0: अटेंशन सीख कर रहे हैं,
1: जस्टिफाइंग, आर्ग्यूइंग, जिद करना, सिद्ध करने की कोशिश करना, ये सब कहीं ना कहीं ईगो के कारण है, और ये बाह्य स्वरूप है.
0: सिस्टर शिवानी, ये सारे जो एस्पेक्ट्स आपने बताया कि जो हमारे ईगो को रिप्रेजेंट करते हैं कहीं ना कहीं, इन पर बातचीत करेंगे, क्योंकि जिन्हें हम ये मान के चलते हैं कि ये बाह्य ही है, कहीं ना कहीं अंदर इससे कोई जुड़ाव नहीं है, ये आज सामने बात आई कि इनसे जुड़े हुए हैं. लेकिन आज जो पूरा मुद्दा था वो ये था कि जो ईगो है वो बाहर भी हो सकती है और अंदर भी, और कहीं ना कहीं हमारे डर से जुड़ी है, फियर ऑफ लूजिंग समथिंग, इट्स एन अटैचमेंट.
1: एब्सोल्युटली.
0: चलिए, आज आपसे बातचीत की, सार्थक बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया.
1: थैंक यू.
0: ये सफर है, ये जर्नी है जिसमें हम तलाश रहे हैं खुद को, सेल्फ अवेयरनेस. इस सफर में हम आगे यूं ही बढ़ते रहेंगे. आज जो हमने बात की वो ये कि इस सेल्फ अवेयरनेस के प्रोसेस में जो ऑब्स्टेकल, जो कठिनाई सबसे बड़ी है, वो है हमारी ईगो. ईगो जो बाहर भी दिखती है, अंदर भी हो सकती है, और सबसे बड़ी बात है ईगो पैदा होती है भय से, यानी कि फियर से. आगे हम जानेंगे कि किस तरह की इमोशंस या बिहेवियर्स जो हैं वो इस ईगो को रिप्रेजेंट करते हैं. लेकिन फिलहाल वक्त है कि आपसे इजाजत लें. आपके पास कोई सवाल है, आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, कोई समस्या है, कोई बात है जो आप हमें बताना चाहते हैं, आपका स्वागत है. फोन कीजिए या फिर ईमेल भी कर सकते हैं. हमारा फोन नंबर है 9873666555, और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com.

वतन करा के श्रोताओं को हमारा नमस्कार। संत कबीर दास का जन्म संवत 1456 और निर्वाण संवत 1575 माना गया है। कबीर निष्कपट, फक्कड़, आडंबरहीन और वीतरागी जीवन जीते थे। आपाद मस्तक प्रेम में डूबे हुए कबीर ने पंडित, शेख, अवधु और योगी सभी पर आक्रमण तो किया, मगर बिना किसी बदनीयत के। पूजा, नमाज, हज और तीरथ से उनका कोई सरोकार नहीं था। बड़े ही सहज रूप से कबीर ने कहा था कि हम वासी उस देश के, जहां 12 मास विलास, प्रेम झरे विकसे कमल, तेज पुंज प्रकाश। उनके लिए प्रेम परम पुरुषार्थ है।

भाषा कबीर की चेरी थी, मगर उन्होंने कभी भी शब्दों का आडंबर नहीं रचा। आचार्य द्विवेदी ने कबीर के बारे में कहा है कि कबीर ने कहीं काव्य लिखने की प्रतिज्ञा नहीं की, तथापि उनकी आध्यात्मिक रस की गगरी से छलके हुए रस से काव्य की कटोरी में कम रस इकट्ठा नहीं हुआ। कबीर न तो काव्यगत रूढ़ियों के कायल थे और न ही जानकार, फिर भी यूं लगता है जैसे उनके लिखे हुए सहज दोहों में सारे जग का दर्शन समाहित हो गया हो।

कबीर ने विलक्षण अलख अगोचर अगम्य और प्रेम पारावर भगवान को राम कहकर संबोधित किया है। राम से उनका अद्भुत रिश्ता रहा। वे स्वयं को राम का कुत्ता मानते थे। वे कहते थे, गले राम की जेवड़ी, जित खेचे तित जाऊं। पर राम है कहाँ, जरा कबीर से पूछिए।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। गायक कलाकार थे उमेश तरकसवार, वीनस तरकसवार, निखिल, कमलेश। संगीतकार थे उमेश वीनस। आलेख और उद्घोषणा सुधा अनुपम, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय की। आज के इस कार्यक्रम में आपने जो गीत सुने उन्हें हमने लिया था स्वराज संस्थान संचालनालय द्वारा जन गर्जे श्रृंखला के अंतर्गत जारी ऑडियो एल्बम से। दोस्तों, आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, खतों से हमें जरूर सूचित करें।

शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की जोड़ में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: डिप्रेशन इज एंगर टर्न्ड इनवर्ड्स। जब आप औरों पे नहीं गुस्सा करते तो आप अपने पर ही करने लग जाते हैं, लेकिन शायद जब आप औरों पे भी गुस्सा करते हैं तब भी अपने पर गुस्सा कर रहे हैं। आपको गुस्सा देने के लिए वो मेरे से होते हुए ही गुजरेगा, वो एनर्जी पहले यहाँ क्रिएट करनी पड़ेगी। इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं आपको कुछ भी दे दूं विदाउट क्रिएटिंग इट। पहले मुझे कूट कूट के गुस्सा अपने अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी कि मुझे अपने आप को क्या देना है। नहीं, मुझे तो इसे गुस्सा करना ही है। कीजिए, बट ओनली रिमेम्बर द एनर्जी दैट एंगर आई क्रिएट देन आई गिव।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: पुणेरी आवाज 107.8 FM खुश रहो खुशियां बांटो विद ब्रह्मा कुमारी।
1: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी। वेलकम सिस्टर।
2: ओम शांति।
1: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग शक्ति।
2: थैंक यू सो मच।
1: मैं फिर से कुछ पढ़ना चाहता हूँ।
2: बिल्कुल।
1: एक्सेप्टेंस पे बात हो रही है। इट सेज एक्सेप्ट देन एक्ट। Whatever the present moment contains, accept it as if you had chosen it. This will miraculously transform your whole life.
2: Kitni powerful statement hai. Accept and then act. Paristhiti aayegi, respond humne karna hai. लेकिन रिस्पोंड करने से पहले परिस्थिति को एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट भी ऐसे करें जैसे कि उस परिस्थिति को हमने ही चूज किया था। और अगर हम ये कर लेते हैं तो ये हमारे जीवन में मिरेकल्स क्रिएट करेगा।
1: क्या मीनिंग है इसका?
2: ये एक शक्ति है कि जो हुआ, जैसे हमने पहले देखा, लोगों को एक्सेप्ट करना, वो जो है जैसे हैं, जैसे संस्कार हैं, जैसा व्यवहार है, हम उसको स्वीकार कर रहे हैं। स्वीकार कर रहे हैं मींस क्या कर रहे हैं?
1: हमने ये कहा था पिछली बार, आपने मुझे ये बताया था कि ये सोचो कि दे आर डिफरेंट, वो अलग हैं, लेकिन गलत नहीं है।
2: गलत नहीं, लेकिन एक्सेप्ट करने से बेनिफिट क्या हो रहा था कि हमारा माइंड
1: शांत रहा,
2: साइलेंट था। हमने ये भी देखा कि हमने इंस्ट्रक्शन भी देनी है, ये नहीं है कि हम छूट गए या किनारा कर लिया। एडवाइस भी देनी है, काम भी करवाना है, लेकिन वो सब कुछ और अच्छा हो उसके लिए पहले अपने मन को शांत करना है। दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट लाइन, एक्सेप्ट एंड देन एक्ट। एक्सेप्ट एंड देन एक्ट।
1: जैसे अगर मुझे आपको कुछ कहना है तो पहले मैं आपको एक्सेप्ट करूँ।
2: यस yes.
1: आपको शांत करूं और अपने माइंड को शांत
2: करूं। मेरे को शांत करूं
1: नहीं, नहीं। जैसे मैं आपको एक्सेप्ट करूं और मेरी तरफ से आपको कोई रॉन्ग वाइब्रेशन नहीं जाए तो हम दोनों तो शांत रहेंगे।
2: नॉट नेसेसरीली मैं शांत रहूं,
1: मेरी तरफ से वाइब्रेशन शांत रहे।
2: यस।
1: तो थोड़ी भी तो थोड़ा तो असर पड़ेगा उसका।
2: थोड़ा तो असर पड़ेगा।
1: जब मेरी बुरे थॉट्स का आपको पड़ता है तो ये भी तो पड़ेगा।
2: ये पड़ेगा, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप शांत होकर
1: अच्छा
2: अपने को संभालेंगे और फिर उस स्थिति में जब मुझे और परिस्थिति को संभालना शुरू करेंगे देन द होल टास्क इज गोइंग टू बी वेरी ब्यूटीफुल एंड सिंपल एंड इजी।
1: ओके, उसका दिमाग ज्यादा चलता है जो स्टेबल रहता है।
2: जो स्टेबल रहता है वो शांत रहेगा, क्लैरिटी रहेगी, एफिशिएंसी ज्यादा रहेगी, निर्णय शक्ति अच्छी होगी, फोकस सोल्यूशन के ऊपर होगा, जो शांत रहेगा। एक्सेप्ट एंड देन एक्ट। ये हर टाइम चेक करें। जैसे हम क्या कहते हैं, जब कंप्यूटर और ये सारी चीजें लगी होती हैं, पहले यूपीएस को ऑन करो, पहले स्टेबलाइजर को ऑन करो, फिर जाके कंप्यूटर को ऑन करना।
1: फ्लक्चुएशन आ गया।
2: अगर वो यूपीएस को नहीं ऑन किया या स्टेबलाइजर को नहीं ऑन किया

0: एंड देन एक्ट. एक्सेप्ट करना मीन्स ये नहीं कि सब कुछ ठीक है. यू नो सम पीपल फील ऐसे कैसे एक्सेप्ट, ये गलत है फिर कैसे एक्सेप्ट, वो ठीक नहीं है कैसे एक्सेप्ट. एक्सेप्ट करना डजंट मीन कि सब कुछ ठीक है.
1: ये अंडरलाइन करूंगा मैं ये लाइन को. एक्सेप्ट करना डजंट मीन सब कुछ ठीक है, सब ठीक नहीं रहते हुए भी
0: एक्सेप्टेंस ओनली मीन्स मेरे मन की स्थिति ठीक है. एक्सेप्टेंस डजंट मीन कि परिस्थिति ठीक है अभी. सी
1: मैं नहीं हिला.
0: हाँ एक्सेप्टेंस. सी सम पीपल से यहाँ करप्शन है, यहाँ चीटिंग है, जैसे मेरे घर में कोई स्टाफ ही गलत कर रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, कोई तो घर से चोरी कर रहा है. स्मॉलर लेवल एट अ वेरी बिगर लेवल हर चीज हो रही है, तो क्या हम उसको एक्सेप्ट करें? यू नो व्हाट पीपल विल फील. एक्सेप्ट करें मतलब एक्सेप्ट करें सब ठीक है.
1: दे मीन कि क्या इनको करने दें?
0: हाँ वो तो बिल्कुल नहीं. एंड सब कुछ वो ठीक है वो भी नहीं है.
1: फिर पुलिस को अगर ये बोलेंगे तो बोलते हम चोर को चोरी करने देंगे.
0: हाँ ऐसे बोलते हैं. फिर बिकॉज लॉट ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आफ्टर वॉचिंग अवेकनिंग ऑल्सो एक्सेप्ट कर लो. ऐसे कैसे एक्सेप्ट कर लो? उसने मुझे चीट किया एक्सेप्ट कर लो. उसने गलत किया एक्सेप्ट कर लो. किसी ने तो मेरे ऑफिस में इतने लाखों का नुकसान कर दिया एक्सेप्ट कर लो. नहीं एक्सेप्ट कर लो डजंट मीन कि परिस्थिति ठीक है. एक्सेप्ट कर लो ऑल्सो डजंट मीन कि जो सामने वाले ने किया वो चीज ठीक है. एक्सेप्ट कर लो मीन्स वर्तमान समय उस परिस्थिति को फेस करने से पहले मेरे मन की स्थिति ठीक है. क्योंकि मन की स्थिति को ठीक करे बिना जब मैं परिस्थिति को ठीक करने जाती हूँ तो परिस्थिति का प्रभाव मन पर पड़ जाता है.
1: क्योंकि मैं पहले से हिला हुआ हूँ.
0: पहले से हिला हूँ लेकिन मन की स्थिति को ठीक करके मैं परिस्थिति को ठीक करने जाती हूँ तो मेरे मन की स्थिति का प्रभाव परिस्थिति पर पड़ता है.
1: मैंने आपसे कहा था डॉक्टर अपने बेटे को अपने बेटी को कभी ऑपरेशन नहीं करता है.
0: यस
1: क्योंकि क्योंकि फिर वो मन की उसकी स्थिति जरा भी इधर उधर हो तो वो गलती हो सकती है ना.
0: कोई भी सर्जरी करने से पहले एक डॉक्टर भी एक पेशेंट के लिए जब सर्जरी करने जा रहा है तो एक सर्टन एलिमेंट ऑफ फियर या डाउट क्रिएट हो जाता है कि सब ठीक होना चाहिए. आई होप ऑपरेशन करते करते कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं आ जाए, सब स्मूथ चले सब. लेकिन जब वो डॉक्टर एक रिलेटिव होगा, एक पेरेंट होगा, तब वो एलिमेंट ऑफ फियर कई गुना बढ़ जाएगा और उस फियर की वजह से वो परिस्थिति में कॉम्प्लिकेशन आने के चांसेस वो बढ़ जाएंगे क्योंकि उसकी एफिशिएंसी पर इफेक्ट होगा. अगर उसको सर्जरी करते समय एक अर्जेंट क्रिटिकल डिसीजन लेना पड़ जाए, ऐसा करना है या ऐसे करना है, अब भी एक सेकंड में डिसाइड करो ये करना है या ये करना है, तो बिकॉज ऑफ द अटैचमेंट एंड बिकॉज ऑफ द फियर द अबिलिटी टू टेक द डिसीजन वो शायद हो सकता है, शायद किसी किसी के केस में कि शायद गलत डिसीजन हो जाए. तो इसीलिए मन की स्थिति पर अटेंशन रखना कितना इम्पोर्टेंट है. ये लाइन बहुत अच्छी है. इवन अगर हम बाकी लाइन को छोड़ो, सिर्फ इतनी लाइन लो, एक्सेप्ट देन एक्ट, एक्सेप्ट देन एक्ट, नॉट एक्ट एंड देन स्लोली जाके एक्सेप्ट. यू नो व्हाट वी डू,
1: पहले एक्ट कर लिया, हो गया गलती. हाँ, हो गई, इंसान हो.
0: अच्छा कोई बात नहीं, उसने ऐसे कर दिया था, होता ही है. नहीं दूसरे को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं ना थोड़ी. हाँ, देर के बाद अच्छा उसने कर लिया कोई बात नहीं. ना
1: मैंने भी बोला, उसने भी बोला, चलो बात खत्म करो, ये सब पूरी बात है.
0: तो इसमें हमने क्या किया? एक्ट, नॉट इवन एक्ट, रिएक्ट. रिएक्ट एंड देन एक्सेप्ट. लेकिन वो एक्सेप्टेंस का रिजल्ट नहीं है क्योंकि उस रिएक्शन में बहुत सारी एनर्जी क्रिएट हो गई. तो इसको स्विचेस को याद रखना है.
1: एक्सेप्ट,
0: एक्सेप्ट एंड देन एक्ट. फिर सेकेंड लाइन, एक्सेप्ट एज इफ यू हैड चोजन इट. वेरी पावरफुल लाइन, एक्सेप्ट एज इफ यू हैड चोजन इट.
1: बट ये अगर हम स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट से देखें तो चोजन तो इसलिए किया है क्योंकि मैंने कुछ किया होगा जिसका मुझे आज परिणाम मिला.
0: परफेक्ट.
1: जो मैंने कार्मिक अकाउंट के हिसाब से.
0: परफेक्ट.
1: देखिए आपके साथ एपिसोड्स करते करते कुछ तो समझ में आया.
0: अब आप ये बताओ,
1: पहले मैं यही कह रहा था एक्सीडेंट मेरा हो जाए और मैं बोलूं कि मैंने चूज किया था और ये है ना.
0: अब लेकिन ज्ञान इसीलिए इतना पावरफुल टूल प्ले करता है ना. नॉलेज, सी व्हाट आई हैव experienced in these years at the Brahma.

0: तम्बाकू मरीज, ये सारी चीजें जब हम सुनते हैं ना एक्सेप्ट, फिर इमिडिएटली माइंड में ऐसे आता है, ऐसे थोड़ी होता है एक्सीडेंट हुआ उसको हमें कैसे बोलेंगे कि वो परिस्थिति अच्छी है। सपोज मेरा हाथ पैर आज टूट जाए, मैं कैसे बोलूं कि वो परिस्थिति सही है या अच्छी है। तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हमारे जीवन में आती हैं जो हम पहले सोचते थे कि इस बात में भी स्टेबल रहना या इस बात के लिए भी कहना कि ये जो हुआ ये सही हुआ, ये पॉसिबल नहीं है ना। इमिजिएटली द माइंड विल से ये पॉसिबल नहीं है, हाउ कैन यू से सही हुआ जो हुआ जब बात इस तरह की है। लेकिन जो आपने अभी बताया, जो कर्म फिलोसफी का ज्ञान का टूल जब अप्लाई हो जाता है वहां पे, तो फिर जो हुआ सही हुआ ये तो समझ में आ जाता है फिर। और जो हुआ सही हुआ जब कहा, जो हुआ वो हमने ही
1: चूज
0: किया था अपने पूर्व कर्म से,
1: करेक्ट।
0: तो हमारा कॉन्सिक्वेंस हमारे सामने आना है। इट्स एब्सोल्यूटली राइट, इट्स एब्सोल्यूटली फेयर। तो हमने उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद उस सिचुएशन को फेस करना है, उस सिचुएशन को हैंडल भी करना है, उस सिचुएशन में जो सोल्यूशन निकल सकता है वो भी निकालना है, सब कुछ करना है, उस चैलेंज को क्रॉस भी करना है।
1: ये चोजन वाली लाइन सिस्टर, आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई अगेन, कई फॉरेनर्स भी लिख देते अपनी किताबों में ये चोजन को कि यू हैव चोजन इट व्हेन यू वर इन द मदर्स वूम, कि मैं पैदा होके आई विल बी अ लेपर। अरे मैंने बोले ये कोई आर्ग्यूमेंट है? कोई ऐसे चूज करता है क्या? यहाँ आके लोग ना बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर बोला नहीं, आप पैदा होने से पहले भगवान आपसे पूछता है कि आपको कौन सा वाला चाहिए, देन यू चूज योर लाइफ। अरे बाबा, आज जो क्लियर हुई ये बात, चूज योर लाइफ मतलब आपके कार्य, आपने जो कर्म किए अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। आई हैड टू, जैसे आपने मेरे को लास्ट टाइम बताया था कि गेटिंग हर्ट और गेटिंग एंग्री इज योर
0: चॉइस,
1: हाँ, कोई दूसरा आदमी नहीं कर रहा है। कि ना, नाउ आई आइदर चूज टू रिएक्ट, रिस्पॉन्ड
0: रिमेन
1: स्टेबल,
0: गिव लव
1: और रिटर्न विद लव। आई हैव सो मेनी चॉइस, बट आई चूज टू गेट एंग्री और स्लैप यू और मर्डर यू वॉट एवर। तो वो मैंने कार्मिक अकाउंट बना के आई हैव चोजन माई फ्यूचर लाइफ।
0: लेकिन कई बार जो आपने कहा वो बहुत ब्यूटीफुल है, एंड वेरी मेनी पीपल गेट लिटिल कंफ्यूज्ड उस बात को लेकर, क्योंकि उसको क्या कहते हैं हम, जैसे आपने कहा हमने चूज किया था, हमने चूज किया कि हमारे जीवन में ये चैलेंज आएगा, कोई नहीं चूज करेगा उस तरह से। अगर हमें चॉइस मिले तो हम अपने जीवन में छोटा सा दुख भी चूज नहीं करेंगे, कौन चूज करेगा?
1: रास्ते में कांटा है तो मैं रास्ते को साइड वाले चूज करता हूँ,
0: हाँ।
1: सिर्फ कांटे से हटता हूँ
0: सर,
1: तो वो तो बहुत बड़ी बात है।
0: लाइक यू सेड के व्हेन द सोल इज इन द वोम्ब ऑफ द मदर, माँ के गर्भ में है और अपने जीवन की स्क्रिप्ट चूज कर रहा है अगर, या परमात्मा से पूछ रहा है और परमात्मा से जीवन की स्क्रिप्ट चूज कर रहा है, तो हम अपने जीवन में एक भी कांटा चूज नहीं करेंगे, कैसे चूज करेंगे?
1: अभी यहाँ से वॉक करके कुर्सी तक आ रहा था तो मैंने दो जगह, एक भी कीचड़ था, सूखे में गया, सूखे के बस कांटा था, हट गया,
0: हाँ।
1: इतना हटते हटते अच्छा रास्ता चूज करके आया मैं,
0: परफेक्ट। तो ये चॉइस कहाँ करनी पड़ती है? जब हम रास्ते पर चल रहे हैं,
1: करेक्ट,
0: राइट। अगर आप वहां बैठते, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द जर्नी, वहां बैठकर आप नहीं चूज कर सकते कि जब जब मैं चलूंगा और जहां जहां से मैं चलूंगा कांटे आएंगे या नहीं आएंगे, दोनों चीजें चूज नहीं कर सकते, आप चूज नहीं कर सकते। लेकिन जैसे जैसे आप रास्ते में चलेंगे
1: वो दिखा,
0: क्योंकि रास्ते में सिर्फ आप नहीं हैं, आपके साथ और भी लोग हैं। सपोज ये वाली फिलोसफी होती कि हम चूज कर सकते हैं, आप भी इस जीवन में आए, मैं भी इस जीवन में आई। सपोज आपने चूज किया कि आपकी जीवन बहुत स्मूथ चलेगी, बहुत स्ट्रेट चलेगी, सब परफेक्ट चलेगा। लेकिन सपोज मैंने चूज किया, सपोज कि आके आपको तंग करना है, आपको चीट करना है, आपको धोखा देना है, बार बार देना है, जो आप करेंगे उसमें मैंने ऑब्स्टिकल बनना है। अगर मैंने चूज किया तो फिर आपकी चॉइस वर्क कैसे करेगी उसके साथ? विल नॉट हैपन। पीपल नीड टू सिट इन, यू नो वी नीड टू सिट इन चर्न। जब हम कुछ ऐसी चीजें पढ़ते हैं ना, सुनते हैं, तो उसपे बहुत मंथन करने की जरूरत है।
1: अच्छे कवर से, ग्लेज्ड कवर, ब्यूटीफुल बुक, मोस्ट सेलर, ये वो लिख के कुछ भी कोई लिख
0: नहीं,
1: देता है।
0: बुक तो सही है,
1: पीपल फॉलो,
0: तो बुक तो सही है, लेकिन बुक में जो लिखा है उसका मीनिंग समझना सही रूप से है ना।
1: एक मेरा दोस्त था वो बोलता था कि गुरु नानक जी ने भी तो यही बोला ना, नानक दुखिया सब संसार। मैंने बोला भाई तू अगली लाइन तो पहले पढ़।
0: सही बात।
1: सो सुखिया जिसे नाम लिया था वो भी नहीं, यू नो, आधा आधा ज्ञान लेके।
0: ज्ञान को सीधा सीधा जब हम पढ़ते हैं उसके ऊपर मंथन नहीं करते, हर शब्द के पीछे एक मीनिंग है। टॉलरेंस का एक्चुअल मीनिंग क्या है? आज तक तो एक बहुत अलग मीनिंग से चले हैं हम।
1: टॉलरेंस का मीनिंग आप समझ में आया?
0: वही तो, जब
1: परमात्मा एक्सेप्टेंस का भी,
0: एक्सेप्टेंस का भी, लेट गो का भी, कि दर्द को लेट गो करना, व्यक्ति को नहीं लेट गो कर देना, सिचुएशन को नहीं लेट गो कर देना, अपने अंदर के पकड़े हुए दर्द को लेट गो करना है। हर बात का मीनिंग समझ में आता है। इसी तरह चूज, वी चूज एवरीथिंग दैट हैपेंस इन दिस लाइफ। ये लाइन हम लोग सब अलग अलग जहां पढ़ रहे हैं, जिस भी किताब से पढ़ रहे हैं, बैठकर अगर हम थोड़ा सा भी रिफ्लेक्ट करेंगे ना, थोड़ा सा भी, हम सीधा सीधा पढ़ते हैं ना, पढ़े इसको सीधा, फिर उसको समझे, क्या हम कभी चूज करते कि हम इस जीवन में आते और हमारा डिवोर्स होता? क्या हम कभी चूज करते कि हम आते इस लाइफ में और हमारा 20 साल का बच्चा शरीर छोड़ता, यू नो, एक्सीडेंट में डेथ हो जाती? कौन चूज करके आएगा ऐसे? कौन सी आत्मा अपने लिए ऐसे चूज करेगी?
1: कोमा में रहूं, कोई चूज
0: करके चूज कर सकता है? नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ, हमने चूज किया मतलब हम एक ऐसा कर्म करके आए हैं कि उस कर्म का कॉन्सिक्वेंस, क्योंकि उस कर्म की वजह से है।
1: एक्चुअली मैं बोलूं, इट लुक साउंड्स वेरी स्ट्रांग। हम जो करके आए हैं, वी हैव नो अदर चॉइस
0: ऑफ
1: चूज तो छोड़ो, वी हैव नो अदर चॉइस बट भुगतने के
0: अलावा। नो अदर चॉइस व्हाई? लेकिन चूज हमने क्यों किया? क्योंकि जब हमने कर्म किया तो उसी क्षण
1: का भुगतान है ना,
0: क्योंकि कर्म हमने चूज किया था तो कर्म का कॉन्सिक्वेंस भी हमने ही चूज किया है। आज अगर हम सपोज गलत खा पी रहे हैं, इतनी छोटी सी चीज भी, और हमने कहा देखे जाएगी ना, कुछ नहीं होता है, सब लोग खाते हैं, क्या फर्क पड़ता है, सब लोग ड्रिंक करते हैं तो क्या होता है, उसको देखो वो ठीक है, इसको देखो वो कर ठीक है। कर्म जब हम कर रहे हैं उसी क्षण हमने कर्म के कॉन्सिक्वेंस को चूज कर लिया है। अब वो कर्म का कॉन्सिक्वेंस चाहे एक घंटे बाद आए, चाहे वो 10 साल बाद आए, चाहे वो 100 साल बाद आए, उस क्षण हमने कर्म के कॉन्सिक्वेंस को चूज किया है। कर्म को तो चूज किया ही है, कर्म के कॉन्सिक्वेंस को भी हमने उसी क्षण अपने डेस्टिनी में चूज, दोनों साथ ही चल रहे हैं ना,
1: मतलब एक कॉइन के दोनों तरफ है।
0: जैसे आपने कहा और कॉन्सिक्वेंस, जैसे आपने कहा कि बात आई गुस्सा करना है या प्यार देना है सामने वाले को, ये कर्म हम उस समय चूज करेंगे, वो हम उस क्षण चूज कर रहे हैं कि ये मुझ आत्मा ने कर्म चूज किया, लेकिन उसी क्षण मुझ आत्मा ने उस कर्म का कॉन्सिक्वेंस भी चूज कर लिया। अगर मैंने गुस्सा करने का कर्म चूज किया तो उस क्षण मुझ आत्मा ने चूज किया कि मुझ आत्मा की शक्ति कम हो रही है, मेरी खुशी गायब हो रही है, मेरी विल पावर कम हो रही है, मेरे शरीर पर उसका असर पड़ रहा है, मैं सामने वाली आत्मा को गलत वाइब्रेशन भेज रही हूँ, वो आज नहीं तो कल उसने भी मेरे साथ गलत करना ही है। ये सारे कॉन्सिक्वेंस मैंने उस क्षण जब गुस्सा चूज किया, ये सारे कॉन्सिक्वेंस चूज कर लिए। अब ये कॉन्सिक्वेंस कभी भी आएंगे, कभी भी आएंगे। आई डोंट नो व्हेन दे विल कम बैक, बट दे विल कम बैक। सम कॉन्सिक्वेंसेस कम उसी टाइम, उसी समय फील हो जाता है, एंड कुछ कॉन्सिक्वेंसेस बाद में आते हैं। यही अगर हमने उस क्षण कर्म चूज किया कि इट्स ओके, उनके संस्कार है, और प्यार से एक्सेप्ट किया, तो हमने एक कम्प्लीटली अलग लिस्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस चूज कर ली, जिसमें हमने अपने लिए खुशी, प्यार, सेहत और एक बहुत स्ट्रांग रिश्ता, ये हमने चूज कर लिया। दिस इज व्हाट दोज लाइंस मीन। वी चूज what is happening with us in life, and that could be as big as accident, that could be as big as everything, sab kuch jo ho raha hai wo humne choose kiya. Agar mujhe aaj aakar koi cheat karke jata hai, I have chosen it, wo maine choose kiya tha.
1: Koi atma again will repeat ki by our karma.
0: Jab mujhe ye बात कूट कूट के इतना इजी नहीं होता, टाइम लगता है, बार बार बोलना पड़ता है अपने आप को, क्योंकि बातें हमारे सामने कई बातें अच्छी नहीं आती, तो जब बार बार कोई बात आए और बार बार हमें ये याद रहे ये मेरे कर्म का कॉन्सिक्वेंस है, चाहे वो कोई बात है, चाहे वो कोई बीमारी है, चाहे वो कोई रिश्ता है, चाहे वो सामने से किसी का व्यवहार है, आप मेरे साथ कैसा व्यवहार करते हैं आज, ये भी तो मैंने चूज किया है, दिस ऑल्सो इज माई चॉइस, बिकॉज हाउ यू आर विद मी इज ओनली अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ माई प्रीवियस कर्मा।
1: एंड आज बदल भी सकते,
0: आज तो बदलेंगे उसको, लेकिन वो लाइन कि कैसे एक्सेप्ट करे उस सिचुएशन को, हमने चूज किया है, ये तो बार बार करना पड़ता है। सेकंड लाइन जो बुक्स में कहेंगे वो ये कि हमने ये क्यों चूज किया, क्योंकि क्वेश्चन आता है ना, इतना डिफिकल्ट चीज क्यों चूज की, तो हमने क्यों चूज किया, तो कहा हमने चूज किया टू लर्न सम लेसन ऑफ लाइफ, कि सोल जान पूछ के मुश्किल चीजें चूज करती है, क्योंकि आजकल मुश्किल चीजें आ रही है सबके सामने जीवन में, तो सामने से कोई पूछता है इतनी मुश्किल चीजें मैं क्यों चूज करूं कि मेरे साथ ऐसे गलत गलत हो, तो फिर वो समझाते हैं आपने इसलिए चूज किया टू लर्न सम लेसन्स दैट यू नीडेड टू लर्न, विच मीन्स कि वो कर्म का कॉन्सिक्वेंस आएगा, लर्न द लेसन मीन्स जो आपने अभी कहा कि इस बार का आपका रिस्पॉन्स उस सिचुएशन में बिल्कुल ही डिफरेंट होगा, अगर वो रिस्पॉन्स पहले के जैसे ही था फिर से नेगेटिव, तो देन वी हैव नॉट लर्नड एनी लेसन्स इन लाइफ, फिर हमने कुछ नहीं सीखा।
1: आजकल स्ट्रीट्स के ऊपर बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर्स बनाते हैं,
0: हाँ।
1: एक तो तरीका है कि मैं सामने वाली गाड़ी को देखता हूँ कि एकदम वो जल्द बम्प कर दिया तो मैंने ब्रेक कर लिया, आई हैव लर्नड अ लेसन,
0: राइट।
1: दूसरा मैं खुद
0: पे जाके जर्क
1: मारा और मेरी गाड़ी बम्प खा गई, झटका खा गई, आई हैव लर्नड अ लेसन की सेकेंड टाइम आई कम हियर,
0: परफेक्ट, और आई जस्ट गो टू द नेक्स्ट स्पीड ब्रेकर,
1: हाँ, और जो आगे आने वाला
0: 1 किलोमीटर बाद एक और होगा नेक्स्ट वाला, यस। लेकिन अगर उसी स्पीड ब्रेकर पे हर रोज जा रहे हैं, हर रोज ध्यान दिए बिना जा रहे हैं और रोज रोज झटके लग रहे हैं,
1: इट्स कमिंग अगेन टू यू बिकॉज यू नॉट लर्नड द लेसन।
0: See again, this speed breaker is only so beautiful.
1: हाँ, तो speed breaker तो वही है।
0: हाँ।
1: I have not learned the lesson. Second time I am doing it again. Third time I am doing it again.
0: पहली बार भी झटका लगा,
1: दूसरी बार भी
0: झटका लगा, हर बार झटका लगेगा।
1: Till I learn the lesson.
0: Till I learn the lesson. And जैसे ही मैंने lesson learn कर लिया, it will be a smooth slide. Life will become very smooth when I learn the lesson. लेकिन अगर हर बार झटका लगा, हम वही संस्कार लेकर फिर हमने जन्म लिया, फिर हमने उसको उसी तरह से रिएक्ट किया बातों को, फिर वही संस्कार लेकर जन्म लिया, तो देन इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग लॉन्ग जन्म जन्म जन्म हम उसी स्क्रिप्ट के साथ चल रहे हैं, देन वी हैवंट चेंज्ड एनीथिंग। सो दैट इज व्हाट दैट लाइन मीन्स, जो हर जगह आजकल क्योंकि बहुत कॉमन हो गया, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट इट, कि आत्मा अपने चॉइस से इस जीवन को लिया है और लिया है लेसन्स को लर्न करने के लिए। अगर हमें उस रूप से भी वो बात याद रहती है कि हमने ये चूज किया है जीवन, तो फिर जीवन में जब भी कोई परिस्थिति आएगी तो वी कैन नॉट से मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इन्होंने मेरे साथ क्यों किया। आप देखो बुक्स में भी हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन बुक बंद करके जब बाहर आते हैं तब डू वी एक्सेप्ट द सिचुएशन। अगर हमें वो बुक की बात भी समझ में आ गई है, वी हैव चोजन दिस लाइफ, तब ये बात करना बहुत इजी हो जाएगा कि एक्सेप्ट द सिचुएशन एज इफ यू हैव चोजन इट।
1: मेरे घर से बट 2 मिनट्स के अवे 2 स्पीड ब्रेकर है, आई डोंट चूज एट होम कि जाऊंगा मैं स्पीड ब्रेकर के ऊपर जाके झटका खाऊंगा, पूरी मेरी कमर ही लेगी, मेरा खाना जो नेक्स्ट चाय हाथ में है तो वो गिरेगी, जो भी है सब, आई डोंट चूज, इट इज जस्ट दैट आई एम नॉट अवेयर। सिर्फ अवेयरनेस मेरी नहीं है, मेरा ध्यान वहां है, गोल्फ में लेट हो रहे हैं, फलाने ने सब बोला, इधर बोला, ऑल दो वेस्ट थॉट्स में हूँ मैं,
0: वेस्ट थॉट्स में है ना,
1: मैं नॉर्मल सेल्फ में हूँ तो दिखता है,
0: तो दिखता है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, सपोज पहली बार नहीं भी दिखा,
1: सेकेंड टाइम भी आया,
0: उसके बाद का भी झटका नहीं लगना चाहिए। जब हम एक नए रास्ते पे जाते हैं ना, तो कभी पहली बार लग सकता है झटका कि हमने नहीं देखा एकदम से, लेकिन फिर झटका लगे उसके ऊपर।
1: हाँ, तो सोल वॉज नॉट अवेयर।
0: बट इसी तरह एक आत्मा के साथ, एक रिश्ते में, एक सिचुएशन में, किसी बात पे पहली बार झटका लगा, इट्स ओके, लेकिन हर बार उसी बात पे झटका लगेगा, तो ये तो हमारी अवेयरनेस की कमी हो जाती है। तो आज इतना ही पक्का कर लेते हैं सिर्फ, आपकी पूरी लाइन का आधी लाइन हुई सिर्फ, एक्सेप्ट एंड एक्ट, एंड एक्सेप्ट एज इफ यू हैड चोजन द सिचुएशन। तो सिचुएशन को हमने चूज किया, उतने प्यार से एक्सेप्ट करें।
1: वो तो बोल रहा, देन देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ मिरेक्युलस,
0: दैट विल बी अ मिरेक्युलस, दैट वी विल सी कि वो क्या मिरेकल क्रिएट होगा फिर उससे।
1: बिफोर वी क्लोज लाइक मेडिटेशन कर लें।
0: श्योर, लेट्स सिट बैक कंफर्टेबल, देखें अपने आप को। मैं आत्मा, अनेक जन्म, विजुअलाइज करें, इससे पहले एक अलग शरीर, अलग बातें, अलग रिश्ते, उससे पीछे कितनी लंबी यात्रा से हम आ रहे हैं। इस लंबी यात्रा में जो जो कर्म मैंने किए, हर कर्म का कॉन्सिक्वेंस आज मेरे साथ है। आज प्रेजेंट सिचुएशन, जो रिश्ते मेरे सामने हैं, जो मेरी सेहत है, जो सिचुएशंस मेरी लाइफ में आ रही हैं, हर चीज, हर बात, हर व्यक्ति को मैं आत्मा अपने कर्मों से चूज करके आई हूं। मेरे जीवन में आने वाली हर बात को मैंने खुद चूज किया है। आज मेरे पास चॉइस है कि आज कौन सा ऐसा कर्म करना है जिससे मैं अपने आज को और आने वाले भविष्य कॉन्सिक्वेंसेस को आज चूज कर सकती हूँ। I, the powerful soul, choose my present and my future. Om Shanti.
1: Om Shanti.
0: Thank you.
1: Thank you so much, sister. Om Shanti.
2: Accept and then act. Whatever the present moment contains, accept it as if you had chosen it. When we accept the situation, our mind is silent and stable. Our efficiency and decision-making power increases. Our focus shifts from the problem towards the solution. Accept does not mean everything that is happening is perfect. Acceptance only means that our state of mind is perfect. Accept does not mean to let things be the way they are. It means keeping our mind stable and working on the situation. If we face the situation with a disturbed mind, the situation influences our mind. Our mind gets controlled by the situation. If we become calm and positive and then face the situation, our mind influences the situation. Our mind controls the situation. Every situation that is coming before us today is a consequence of our past karma. While choosing our karma, we also chose this consequence. So, we have chosen everything that is happening to us. This understanding helps us to accept the situation. Now, choose the right response in the present karma.
0: If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 099-99-559-660.

आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: किसी का एक लाइन ना, इवन अगर कल बीत गया इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पे रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: लाइफ का जो स्टाइल है उसको लाइफस्टाइल कहते हैं। लाइफस्टाइल इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट वी आर ईटिंग, ड्रिंकिंग, वेयरिंग। लाइफस्टाइल इज अबाउट व्हाट वी आर थिंकिंग, स्पीकिंग, बिहेविंग। दैट्स माय लाइफस्टाइल।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम चर्चा करते हैं, आज का हमारा विषय है चार बातों को छोड़ो और चार बातों को अपनाओ। तो हमें यहाँ पे देखना है कि वो कौन सी चार बातें हैं जिन्हें हमें छोड़नी है। पहला है अपनी तुलना दूसरों के साथ ना करें। दूसरा है किसी के साथ गलत स्पर्धा ना करें। तीसरा है किसी की भी आलोचना करने से दूर रहें। और चौथा है किसी की भी शिकायत से भी दूर रहें, उसे भी छोड़नी बहुत जरूरी है। तो अपनी तुलना हम दूसरों के साथ अगर नहीं करें तो इसमें हम देखते हैं, जब हम अपनी तुलना दूसरों के साथ करते हैं तब तीन प्रकार की मानसिक विकृतियां खड़ी हो जाती है। पहला है सुपरलेटिव कॉम्प्लेक्स, हाँ, दूसरा है इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स और तीसरा है जेलसी यानी कि ईर्ष्या। तो यहाँ पर हम देखते हैं सुपरलेटिव फीलिंग जो होती है वाला, ये जो व्यक्ति होते हैं वो दूसरों से अपने को ज्यादा अच्छा मानते हैं, जिसके कारण उसमें अनेक प्रकार के अहंकार उत्पन्न होते हैं। अहंकारी व्यक्ति जो है अनेक प्रकार के भय से पीड़ित रहता है। उनमें तीन मुख्य है, वह है असफल ना हो जाए, कहीं कोई उसे अस्वीकार ना करे या उसका त्याग ना करे और कुछ भी खोना ना पड़े। एक दूसरा होता है इन्फेरियोरिटी फीलिंग। इस फीलिंग के जो व्यक्ति होते हैं वो व्यक्ति खुद को दूसरों से हीन तथा कम कुशलता वाला समझता है। इस प्रकार हताशा तथा निराशा से पीड़ित रहता है, उसमें उमंग उत्साह की कमी होती है। और तीसरा है वो ईर्ष्या उत्पन्न होने वाला, हाँ, उसमें ईर्ष्या जो का जो मूल कारण है भी दूसरों के साथ की रही है अपनी तुलना ही है। दूसरों की प्राप्तियों से ईर्ष्या करने से व्यक्ति नकारात्मक तथा व्यर्थ विचारों के भंवर में फंस जाता है, या तो दूसरे को गिरा देने की अथवा किसी भी तरह से उससे आगे निकल जाने की पैतृकबाजी में उसका मन व्यस्त हो जाता है। ईर्ष्या एक जो है आग के समान है, उसमें जलने के सिवाय कुछ हाथ नहीं लगता। ईर्ष्या से बचने के लिए, इससे बचने के लिए हमें क्या करना है, सदैव स्मृति में रखें कि हम सब इस विश्व नाटक में एक अद्वितीय पाठधारी कलाकार हैं। हम में जिन विविध क्षमताओं का सामंजस्य है वैसी क्षमताओं का सामंजस्य अन्य किसी व्यक्ति में हो नहीं सकता। प्रत्येक आत्मा का पाठ विशिष्ट है। हम अपने पाठ से संतुष्ट रहें। तो आपने देखा कि हम अपनी तुलना अगर दूसरों के साथ करते हैं तो हमें कितनी तरह की परेशानियां जो होती है उसका हमें सामना करना पड़ता है। तो हमें इन तीन बातों को छोड़ना है और किन्हीं तीन बातों को अपनाना है, और वो है सुपरलेटिव फीलिंग, इन्फेरियोरिटी फीलिंग और ईर्ष्या। इससे अगर हम दूर रहें तो हमारे जिंदगी में ये तुलना वाली जो बात है इससे हम परेशान ना हो और इसे हम अपनी जिंदगी से बिल्कुल बाहर रख सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ। तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना आपका फिर से स्वागत करती हूं। और हम अपने आगे की चर्चा इसी तरह जारी रखते हुए हमारा आज का विषय है चार बातों को छोड़ो, चार बातों को अपनाओ। तो हम देखते हैं कि किसी के साथ हमें गलत स्पर्धा ना करें, ऐसी भावना रखनी है। स्पर्धा स्वस्थ या खेल दिली की भावना से हो तो कुछ लाभकारी हो सकती है, लेकिन स्पर्धा का जो स्वरूप आज हम देख रहे हैं उससे अनेक प्रकार की नुकसान हो रही है। आज स्पर्धा का स्वरूप ज्यादातर गलाकाट स्पर्धा का, दूसरों को गिरा देने का भावना, ये सब किसी भी तरह से जीतना ही है। इस विचारधारा का हो या किसी भी विचारधारा का हो, ऐसी प्रतियोगिता मानसिक रूप से बहुत नुकसान करती है। यह व्यक्ति को निरंतर दबाव में रखती है, लड़ने की भावना उत्पन्न करती है, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए गिरा देने या छल कपट के विचार पैदा करती है। ऐसी भावना वाली स्पर्धा में प्राप्त हुई जीत के बाद स्वमान के बदले अधिकतर मिथ्या अहंकार उत्पन्न होता है, तनाव तथा व्यग्रता बढ़ती है, हार की परिस्थिति में निराशा तथा हताशा पैदा होती है, आत्महत्या करने तक की भी किस्से बनते हैं। इसलिए ऐसी स्पर्धा से दूर रहें। प्रत्येक मनुष्य की जो विशेषताओं को देख और विशेषताओं के अनुसार उसको आगे करें। हो सकता है हमारा कौशल्य या अनुभव ज्यादा हो तो पीछे रहकर उसे मदद करें, लेकिन सबको पीछे रखकर किसी भी तरीके से आगे रहने को तथा हमेशा प्रसिद्ध रहने की वृत्ति को समाप्त करें। सबसे ज्यादा बातें अगर आती है तो वो होती है एक अहंकार की, जिसमें स्पर्धा मुख्य है कि मनुष्य स्पर्धा के लिए कुछ भी कर जाने की कोशिश करते हैं। तो ये इसके बदले जो हमें जीत मिलती है वही है विचारधाराओं को, हमें अच्छी विचारधाराओं को अपनानी है। और ये जीत जीत नहीं बल्कि हमारी हार होती है। तो आपने देखा स्पर्धा के लिए कितनी ही गलत भावनाओं से की गई ये कार्य जो होती है, ये हमें आगे बढ़ने के बजाय हमें पीछे धकेल देती है। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ। और तब तक के लिए ये सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना आपका फिर से स्वागत करती हूं। और हमारा आज का विषय है, चार बातों को छोड़ो, चार बातों को अपनाओ। तीसरा जो हमारा विषय है वो है, किसी की भी आलोचना करने से हमें दूर रहना चाहिए। एक होता है दुष्भाव, देश भाव, और एक दुष्टता की जो होती है ईर्ष्या की भावना से की गई आलोचना, दूसरों को नीचे गिराने की, उनके उत्साह को खत्म करने के लिए जो भावना उत्पन्न होती है, ऐसी की गई ऐसी आलोचना नकारात्मक है। इस प्रकार की आलोचना आलोचक तथा आलोचना का पात्र बनने वाले दोनों के लिए नुकसानकारक है। निष्काम निस्वार्थ तथा प्रेम भाव से की गई आलोचना तथा दूसरों के फायदे के लिए, दूसरों के उमंग को बढ़ाने के लिए की गई आलोचना जो होता है वो सकारात्मक तथा रचनात्मक हो सकती है। लेकिन इस प्रकार की आलोचना करने के लिए गहरी समझ तथा अनुभव की जरूरत है। हमारी आलोचना तथा उसका उसके साथ की गई जो भी आलोचनात्मक बातें होती हैं, वो ज्यादातर स्वरूप जो होता है नकारात्मक ही होता है। इसलिए आलोचना करने से दूर रहना ही उचित है। आलोचना करने की आदत के लिए अधिकतर नकारात्मक दृष्टिकोण, संस्कार, स्वभाव, आदत जो होती है वो जवाबदार है। अहंकार में भी व्यक्ति को आलोचना करना देखा जाता है, वो करते हैं और उनकी आलोचना करने के फिर उसके बाद उनकी मैं ही सच्चा हूं यह सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। आलोचना से रिश्तों में कड़वाहट पैदा करती है। सबसे ज्यादा जो होती है, सबसे ज्यादा यही बातें सामने आती है कि आलोचना करना मनुष्य के लिए हानिकारक ही है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। आज देखते हैं, कोई भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं है। मनुष्य मात्र को जो भूल के पात्र समझकर माफ कर दे और भूल जाए, आलोचना करने वाले शब्दों के बदले सराहना करने वाले शब्द ढूंढ निकाले और सराहना करे। सराहना करने से हमारी दिनचर्या, हमारी बुद्धि और लोगों के साथ हमारा जो संबंध संपर्क में जो भी व्यक्ति आते हैं उनके साथ हमारा अच्छा बिहेवियर हमें अच्छे व्यवहार कुशल बनाता है और उनके साथ हमारा कोऑर्डिनेशन अच्छा रहता है। इसलिए कोशिश करें कि आलोचना न करने की। तो दोस्तों, इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं आपसे फिर से आकर मिलती हूँ, और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार, तो फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हैं। हमारा आज का विषय है चार बातों को छोड़ो और चार बातों को अपनाओ। चौथी जो बात होती है वो होता है ज्यादातर लोग शिकायत ही करते हैं, तो हमें क्या करना है? कोई भी शिकायत हमें नहीं करनी है। वर्तमान समय प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी व्यक्ति या किसी बात के बारे में मन में शिकायतें लेकर ही घूमता रहता है। शिकायत करना यह मानव मन की एक सामान्य आदत बन गई है। ऐसा व्यक्ति जो होता है अनेक व्यर्थ संकल्पों से घिरा रहता है और उसका मन अशांत रहता है। शिकायत का भाव उत्पन्न होने के अनेक कारण हैं, जैसे कि व्यक्ति अथवा परिस्थिति से असंतोष, अपनी इच्छाओं की पूर्ति न होने के लिए दूसरों को जिम्मेवार मानने की प्रति, दूसरों से की गई अपेक्षाओं का पूरा न होना, किसी व्यक्ति परिस्थिति या घटना द्वारा हुआ कोई भी नुकसान, लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या जैसे विकारों का प्रभाव। शिकायत लेकर घूमते व्यक्ति की भाषा भी कुछ इस प्रकार होती है, जाने दो ना, किसी को कोई सेंस ही नहीं है, जाने दो ना, वह तो है ही विचित्र, मेरी सुनता ही कौन है, उसने मुझे हैरान परेशान कर डाला, भगवान आ जाए तो भी ये सब सुधरने वाले नहीं है, इत्यादि इस तरह की भावनाएं और इस तरह की बातें अक्सर किया करते हैं। शिकायतों से दूर रहने के लिए कोई भी बातों को बहुत ज्यादा उसे तालमटोल कर बहुत ज्यादा आगे बढ़ाने की बजाय उसे हमें छोटा कर देना चाहिए और हमारे अंदर जो भी सकारात्मक दृष्टिकोण है, संतुष्टता, सहनशीलता, धैर्य, निर्भयता, सहानुभूति जैसे दिव्य गुणों की धारणा हमें करनी चाहिए। सबके प्रति हमारा जो है समभाव, बंधुत्व भाव और साक्षी भाव, कर्म के सिद्धांत की गहरी समझ होनी चाहिए। ऐसी ही जो होती है जीवन को सफल, सार्थक तथा सुखमय बनाना हो तो ऐसी भावना, ऐसी सकारात्मक भावना होने से हमारा जीवन शैली भी दिन प्रतिदिन हमें एक अच्छी दिशा दिखाती है और हम अच्छे कार्य करने शुरू कर देते हैं और हमारे अंदर एक सहयोग की भावना जागृत होती है। अपना प्रत्येक कार्य सहयोग तथा संगठन की भावना से हमें करनी चाहिए। किसी भी कार्य की या योजना को सफल बनाने के लिए सफलता मजबूत संगठन के बिना संभव नहीं है और कोई भी मजबूत संगठन बिना सहयोग की भावना के संभव नहीं है। यह सिद्धांत अपने छोटे से परिवार से लेकर बड़ी वैश्विक जो भी है परियोजनाओं तक सबको लागू करना है। सबके प्रति हमारे मन में ऐसी भावनाएं हो कि सभी अच्छे हैं, सभी के प्रति हमारे मन में मित्रता की भावना हो, ये हमारी भारतीय संस्कृति को दर्शाता है। इसके जो भी इसकी संस्कृति के मूल में ही हमें सहयोग से सर्वोदय का भाव रहा हुआ है, अर्थात ये जो भावना है ये हमें प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक के लिए हर समय हर परिस्थिति में हमारी सहयोग की भावना बनी रहती है। हाँ, ऐसी भावना बनी रहनी चाहिए। एक दूसरे के सुख दुख में सहयोगी बनना ये हमारे यहाँ पुण्य का काम माना जाता है। सहयोग की भावना के बारे में कहा जाता है कि जितनी ज्यादा हाथ उठाना उतना ज्यादा अच्छा होता है, जितने हाथ
उतना ही ज्यादा अच्छा है। जहाँ एकता वहाँ उन्नति। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, हाँ साथी हाथ बढ़ाना। इसलिए अपने मन में हमेशा सद्भावना होनी चाहिए, लोगों के प्रति हमारे सहयोग की भावना भी होनी चाहिए, जिससे हमारी जीवन शैली दिन प्रतिदिन अच्छी हो। तो दोस्तों, आपने देखा कि इन चार बातों को छोड़ना और किन्हीं चार बातों से जुड़ने की वजह से हमारी जो दिनचर्या है वो बदल जाती है और हम सत्य की राह की ओर जाना शुरू कर देते हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही सुकून भरी हमारे जिंदगी होती है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, गाते रहिए और कुछ गुनगुनाते भी रहिए। नमस्कार, ओम शांति।

जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। नमस्कार, मैं हूँ अमोल। आप सभी रेडियो पुनेरी आवाज सुनने वालों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम दो लोग बिजनेस कर रहे हैं, बहुत साल हमने अच्छे से किया, करते करते एक की नियत खराब हो गई तो उन्होंने हमें चीट किया, हमारी दुकान के सामने एक और दुकान खोल दी। अब हमें अपनी दुकान में बैठकर चॉइस है कि हमने उनके बारे में क्या सोचना है। हम ये भी सोच सकते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसके साथ इतना बुरा हो इसको पता चले कि दुख क्या चीज होती है। कई लोग तो इतना भी कहते हैं भगवान इसको दिखाए कि इसने मेरे साथ क्या किया है। अगर भगवान है तो मुझे प्रत्यक्ष दिखाई देना चाहिए कि इसको दुख कैसे मिलता है। ये भी एक तरह की सोच है। हम इतना ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं, इतनी ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं कि उनके फ्यूनरल पर भी जाके आ सकते हैं बैठे बैठे दुकान में। कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि नेगेटिव सोचने की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी हम सोच सकते हैं। जैसे नेगेटिव सोचने की लिमिट नहीं है, वैसे किसी के लिए अच्छा सोचने की भी कोई लिमिट नहीं है। हम ये भी सोच सकते हैं जो हुआ हमारा कोई हिसाब किताब था, पूरा हुआ, अब ये अपना बिजनेस अलग करे, मैं अलग करूं, मेरा भी बहुत अच्छा चले, इनका भी बहुत अच्छा चले। क्या मुश्किल होगा ऐसा सोचना? जब हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, सबसे पहला फायदा हमें होने वाला है। व्हाइट बॉल जब हम फेंकेंगे तो वो जाएगी, हिट करेगी, वापस आएगी, वो तो होगा बाद में, फेंकते हुए फायदा किसका होने वाला है? आज जब हम किसी के प्रति पुरानी बातें पकड़ के रखते हैं, दर्द पकड़ के रखते हैं, नफरत पकड़ के रखते हैं, तो नुकसान किसका हो रहा है? मेरा। तबीयत किसकी खराब हो रही है? मेरी। घुटना किसका दर्द हो रहा है? सर्वाइकल किसका दर्द हो रहा है? मेरा। हार्ट की ब्लॉकेज किसको हो रही है? मेरे को। वो एंजॉय कर रहे हैं लाइफ। तो हमने अगर व्हाइट बॉल भेजनी तो किसके फायदे के लिए भेजनी? अपने। हमने क्षमा करना अगर उनको, तो हमने एक्चुअली किसको क्षमा किया? दुनिया में कहते ईंट का जवाब पत्थर से देना। अब अगर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो क्या हो जाएगा? पहली बार ईंट फेंकी थी इसलिए ईंट आई। अब अगर पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर आएगा। अब ईंट का जवाब किससे भेंगे?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: एक बहुत प्यारा इंसान दलत महमूद, मैं बहुत पसंद करता हूँ उनके करीबन सारे गाने, मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। इंसान तो मैं क्या बताऊँ कि शायद ही कोई आदमी मुझे मिला जो तलत साहब के गाने दिल से नहीं पसंद करते और उनको दिल से नहीं पसंद करते।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। मैं स्मिता जयकर, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जैसे सरकार ने नियम बनाया कि टीचर्स स्टूडेंट्स पर हाथ नहीं उठा सकते, पहले उठा देते थे ऐसे ही, थोड़ा सा रूलर मारा, किसी ने चौक मारा, किसी ने थोड़ा, फिर लॉ बन गया कि नॉट अलाउड, उस दिन के बाद बंद हो गया। तो हम लॉ सरकार क्यों बनाए, हम अपने लिए खुद के लिए लॉ बनाएंगे ना, कि मेरे लिए और जो मेरा एनवायरमेंट है वहां पे ये चीज कितनी हानिकारक है। हम एक दर्द का एनवायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं जहां हीलिंग होनी चाहिए। और फिर जब एक ने दूसरे को डांटा, दूसरे ने तीसरे को डांटा, तीसरे ने चौथे को डांटा, तो फिर पांचवे ने तो इरिटेट होके बात कर ही लेनी है।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: आज मैं आत्मा ड्राइवर ये गाड़ी मुझे चलानी है कि मेरी आंखें मेरे हिसाब से चले, मेरा मुख मेरे हिसाब से बोले, मेरा हाथ वो ही करे जो सही है कर्म, और मन वो ही सोचे जो सही है। दैट वुड बी दैट माय कार इज इन माय कंट्रोल। सो लाइक दिस फाइव पीपल आर स्टेइंग इन द हाउस, पांच आत्माएं ड्राइवर और उनकी अपनी अपनी एक गाड़ी। अगर हर आत्मा का अपनी गाड़ी पे कंट्रोल होता तो जर्नी कैसी होती उस रोड के ऊपर? ब्यूटिफुल। हर एक ने प्यार से निकल जाना, हर एक ने एक स्टीयरिंग व्हील घुमाना है, थोड़ा सा दूसरा आ भी रहा होगा तो उसने ऐसे टर्न करना है, उसने घूम जाना, एक्सीडेंट कभी होता ही ना। द पावर टू मोल्ड, द पावर टू एडजस्ट, द पावर टू टर्न हियर, द पावर टू ब्रेक स्टॉप, सब कुछ हो जाता अगर ये गाड़ी मेरे कंट्रोल में होती तो। और अगर पांचों की होती तो वो जीवन, वो घर स्वर्ग होता, राइट? अब अगर सपोज चार की भी नहीं है, एक भी अपने करना शुरू करते हैं, सी, तो कितनी सारी चीजें बचेंगी अगर एक आत्मा अपने ऊपर संयम ले आए। दिस इज द पावर दैट वी हैव। लेकिन अगर पांचों ने अपना ध्यान नहीं रखा, अपनी उनकी ब्रेक्स चलती नहीं, उनका स्टीयरिंग व्हील उनके कंट्रोल में नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो बाकी सब गाड़ियां मेरे हिसाब से चलें, तो एक क्षण भी बिना एक्सीडेंट के नहीं चलेगा उस घर के अंदर। दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: क्या है चित चोर?
1: 1 2 3 4
0: क्या है चित चोर?
1: You sing like किशोर, but शादी का दे.
0: Oh yes, September 8.
1: Oh, very late.
0: Darling, wait.

लग जा गले ए लग जा गले दुनिया चले छम छम छम छम छ छम छ छम ए गण हम तुम पे दिल्ली सार करता है रोज रोज रोज ही तुमको प्यार करता है रोज

किस्मत पे छा रही है क्यों रात की स्याही, किस्मत पे छा रही है क्यों

हम सात सुरों के सागर हैं, हर महफिल में लहराते हैं, हर महफिल में लहराते हैं।

कैसे समझाऊं, बड़ी ना समझ हो कैसे समझाऊं, बड़ी ना समझ।

पार कृष्ण कन्हैया जमुना के तट पे विराजे हैं। झनन न झनन न झनन न न न न क्लान क्लान क्लान भाता मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया जमुना के तट पे विराजे हैं। झनन न झनन न झनन न न न न मोर मुकुट सर कानों में कुंडल कर में मुरलिया मुरलिया मुरलिया ताजे हैं। ताधी थी तक कितने बेदी दिखाई राधा राधा राधा राधा सीधा दीदी सीधा दीदी थी। छनन छनन छुम छुम छनन छुम छुम छनन निरत कांत कांत छुम छनन तछुम तछुम तक सीधा दीदीता मन झट पर से आय रही। ताधी थी तक धान बिकित बिद तान बिकित बिद धन धन धे तन नधान नगराय रही। रही मुस्काय रही पलखाय रही

गगरिया बंसी के धुनों पर धूप गई हर सर पे गगरिया मोहनी मोहन की और ही धुमकिता धुमकिता धुमकिता धुमकिता मैं गई कृष्ण कन्हैया नट खटने राधा की कन्हैया थाम लई राधा ने पुकारा राधा ने पुकारा हाय दई कोई आओ सखी कोई आओ सखी फिर हाथ छुड़ा कर बोली हटो नीला फिर हाथ

इतने में सूरज डूब गया, इतने में सूरज डूब गया, राधा की पायल जाग उठी। दोनों में कलाकी जाग उठी।

तारे थे और नीट गगन पे तारे थे, रैन को दीप सवारे थे और नीट गगन पे तारे थे, राधा को विदा के इशारे, राधा को विदा के इशारे थे, राधा ने आंचल बांध लिया।

0: चकाचक फिर लो पान चबा
1: आओ
0: आहा।

0: भाई बिल्कुल है, मजे मजेदार बने, मिर्ची मसाले के जोर खूब बने तैयार है।
1: भोगी भोगी भोगी भोगी भोगी भोगी भोगी भोगी भोगी भोगी भोगी भोगी।

0: जमेदार सुबेदार पीते घुड़ाकू पीते पीते फिल्म चली वारे तमाकू तेरे घुंघट में पिक पिक घुंघट में पिक पिक घुंघट में पिक पिक हे हे
1: बोगी बोगी बोगी बोगी बोगी बोगी
2: या या या या
1: बोगी बोगी बोगी बोगी बोगी

ये बल्ला, अरे लैलाओं के टेंट में मच गया फिर तो हल्ला। जो भी गेंद आई तो चौका ही फटकारा, पर होश हमारा

उसने फेंका लेग ब्रेक तो हमने मारा छक्का, आउट करता कौन हमें, हम खिलाड़ी पक्का। अरमानों की ग्रीस से बढ़ गए हम तो आगे।

पर हारे प्यार का मैच, क्रिकेट में तो जीत गए पर हारे प्यार का मैच, एक नजर में दिल बेचारा हो गया LBW।

0: खपा खपा से
1: हाय मर जाऊं।
0: हम भी थे एक नजर के प्यासे,
1: क्यों नहीं
0: दिल पे उसने जो हाथ रखा आ गया आराम।